सरयू नदी के तट पर बसी सुंदर अवधपुरी रामलला की जन्मभूमि। दशरथ नंदन राम जी ने इसी नगरी में अपनी मानव सुलभ बाल लीलाएं की। श्री राम दशानन पर विजय प्राप्त कर जब अयोध्या नगरी पुनः पधारे तो ये जानकर अयोध्या वासियों के आनंद की सीमा न रही कि तारनहार श्री राम अब सदा के लिए यही निवास करेंगे। भक्त जनों और संत जनों की प्रार्थनाओं से रामलला के सर से हर प्रकार की अलाबला टल गई।

अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का आराधना चैनल। आइए अब सुनते हैं श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

कामिनां स्वधाम निगाम श्याम सुंदर भवाम्बुनाथ मंदरम प्रफुल्ल कंजलोचन मदादि दोष मोचन प्रलंब बाहु विक्रमं प्रभो प्रमेय वैभवं निशंग चाप

प्रियानुज त्वदङ्घ्रिमूलये नरा भजन्ति नमत्सरा पतन्ति नो भवर् वितर्कवीचि सङ्कुले विविक्तवासिनः सदा भजन्ति मुक्तये मुदा निरस्य इन्द्रियादिक प्रयान्ति ते गतित्वक तमेकम

योगिनां सुदुर्लभ स्वभक्तकल्पपादपं समं सुसेव्यमन्व अनूपरूप भूपतिं नतोऽहमुर्विजापतिं प्रसीद मे नमामि पदाब्जभक्तिदे।

श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, नमः।

ये आकाशवाणी का आराधना चैनल है। आइए सुनते हैं आकाशवाणी श्रीनगर के बालटाल और पहलगाम से अमरनाथ यात्रा पर विशेष प्रसारण।

आप सभी का स्वागत है इस विशेष प्रसारण में। श्रोताओं, प्रतिदिन ये विशेष प्रसारण आप तक पहुंचता है सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक। इस विशेष प्रसारण के द्वारा हमारी कोशिश रहती है कि श्री अमरनाथ जी यात्रा से जुड़ी सभी सूचनाएं हम आप तक पहुंचा सकें। श्रोताओं, आज के इस विशेष प्रसारण में मैं हूं आपकी साथी उद्घोषिका इरम कुरैशी। हम आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं।

सृष्टि के कारक समस्त देवताओं का जन्म ओमकार स्वरूप अक्षर ब्रह्म से हुआ है। स्वर, व्यंजन, शब्द, पद, काव्य, साहित्य सभी ओमकार नाद से प्रकट हुए हैं। चर अचर सारी सृष्टि ओमकार से उत्पन्न हुई है। ऐसे ओमकार स्वरूप भगवान की आराधना अभ्यर्चना पूजा यजन मनन से व्यक्ति सर्वोत्तम सुख प्राप्त करता हुआ अंत में अक्षर ब्रह्म को ही प्राप्त होता है।

श्रोताओं, श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 इस वर्ष 3 जुलाई को आरंभ हुई थी और अब अपने अंतिम और बहुत ही पवित्र पड़ाव पर पहुंच चुकी है। जी हाँ श्रोताओं, छड़ी मुबारक के पावन सफर पर। श्रोताओं, क्या आप जानते हैं कि छड़ी मुबारक की असली धार्मिक महत्व क्या है? यह केवल लकड़ी या धातु की छड़ी नहीं, बल्कि स्वयं भगवान शिव के पवित्र त्रिशूल का प्रतीक मानी जाती है। सनातन परंपरा और आस्था में ऐसी मान्यता है कि इस छड़ी मुबारक के बिना श्री अमरनाथ जी की पवित्र यात्रा पूरी तरह अधूरी रहती है। महंत जी और साधु संतों के संग जब यह पावन छड़ी आगे बढ़ती है तो पूरे रास्ते में एक अलग ही आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है। ये पावन छड़ी सभी यात्रियों की रक्षा करती है और उन्हें सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद देती है। श्रोताओं, छड़ी मुबारक जब बाबा बर्फानी के दरबार पहुंचती है तभी अमरनाथ यात्रा का महाअनुष्ठान संपन्न और सफल माना जाता है। श्रोताओं, कल सुबह 22 अगस्त शुभ मुहूर्त में श्रीनगर के ऐतिहासिक दशमानी अखाड़े से विशेष पूजा अर्चना, आरती और वैदिक मंत्रों के जाप के साथ पावन छड़ी मुबारक को आगमी सफर के लिए रवाना किया गया। साधु संतों की टोली और भक्तों का उत्साह देखने लायक था। श्रोताओं, श्रीनगर से रवाना होते हुए छड़ी मुबारक अलग अलग मंदिरों पर रुकी, वहां पूजा अर्चना और विशेष पूजा हुई। मटन के प्रसिद्ध मार्तन सूर्य मंदिर भी पहुंची, जहां पावन कुंड के पास विशेष पूजा अर्चना और विधि विधान से हवन किया गया। स्थानीय लोगों और भक्तों ने जगह जगह फूल बरसाकर इसका भव्य स्वागत किया। श्रोताओं, दिन भर के इन पावन मंदिरों के पूजन और यात्रा के बाद कल शाम को ही छड़ी मुबारक अपने पहले मुख्य पड़ाव यानी पहलगाम पहुंची, जहां भक्तों ने इसका जोरदार स्वागत किया। श्रोताओं, इस समय पूरी वादी हर हर महादेव और बम बम बोले के जयकारों से गूंज रही है। जो भक्त इस पावन यात्रा में शामिल हैं, उन्हें हमारी तरफ से मंगलमय यात्रा की ढेर सारी शुभकामनाएं।

0: जी श्रोताओं, हम छड़ी मुबारक की पवित्र यात्रा के बारे में बात कर रहे थे और जैसा कि हमने आपको बताया, कल सुबह तड़के ही दशमी अखाड़ा श्रीनगर से छड़ी मुबारक को रवाना कर दिया गया और अलग अलग मंदिरों में पूजा अर्चना के बाद वो पहलगाम पहुंची। अब इसी बारे में हमारे संवाददाता से बात करते हैं। हमारे संवाददाता एस तारिक हमारे साथ फोन लाइन्स पर जुड़ चुके हैं। जी तारिक, क्या कुछ सूचना है आपके पास छड़ी मुबारक की पवित्र यात्रा के बारे में?
1: बहुत शुक्रिया इरम जी, इस विशेष प्रसारण के सभी श्रोताओं को मेरा शुभ प्रभात। 57 दिनों तक चलने वाली श्री अमरनाथ जी यात्रा के अब महज 5 दिन शेष रह गए हैं। 3 जुलाई से शुरू हुई ये पावन यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ रही है। तो सबसे पहले मौसमियात जो के बारे में मैं कुछ बात करूं, तो मौसमी हालात के पेश नजर श्री अमरनाथ जी यात्रा दोनों मार्गों पे 9 अगस्त से आरजी तौर पर मुलतवी है। तो पहलगाम से श्री अमरनाथ जी गुफा तक यात्रा रूट पर आज 23 अगस्त को मौसम मजमी तौर पे उब्र आलू रहने की तवक्का है। सॉरी, पहलगाम से चंदनवारी तक सुबह के अवकात में वक्फे से हल्की बारिशें या मुख्तसर बूंदाबांदी के इम्कान जतवाया गया और इस वक्त पहलगाम के साथ साथ अंतना के बहुत से इलाकों में बारिशें हो रही है। पहलगाम और चंद्रवारी के इलाके में दर्ज हरारत ज्यादा से ज्यादा 14 डिग्री सेल्सियस और कम से कम 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का इम्कान रहता है, जबकि हवाएं तकरीबन 8 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल सकती है। इधर बालाई इलाकों और श्री अमरनाथ गुफा के अतराफ मौसम ज्यादातर अब आलूद और धुंधला रहने की तवक्का है। यात्रा के ऊंचे रास्तों पर बाज मकामात पर हल्की बारिशें या गन गरज के साथ मुख्तसर बारिश हो सकती है, तमाम शाम के वक्त मौसम में बेहतरी आने का इम्कान भी है। श्री अमरनाथ गुफा के करीब दर्ज हरारत ज्यादा से ज्यादा 10 डिग्री, जबकि रात के वक्त कम से कम 6 डिग्री सेल्सियस तक गिरने का इम्कान है। बालाई इलाकों में हवाएं तकरीबन 10 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल सकती है, जिसके बाद सर्दी में मजीद इजाफा महसूस हो सकता है। यात्रियों को बिल्कुल बालाई रास्तों पर मौसम में अचानक तब्दीली के पेश नजर एहतियात बरतने और गर्म लिबास व जरूरी बारानी सामान साथ रखने का भी मशवरा दिया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि छड़ी मुबारक का काफिला कल सूर्य मंदिर मटन से पहलगाम पहुंची। पहलगाम पहुंचने के बाद छड़ी मुबारक गौरी शंकर मंदिर में 2 दिन तक पूजा अर्चना में शामिल रहने की जो परंपरा निभाएगी और आज की रात्रि भी यहां पहलगाम में ही गुजारी जाएगी। इसके बाद छड़ी मुबारक कल 24 अगस्त को चंदनवाड़ी पहुंचेगी और वहीं त्रुदशी की रात्रि जो होती है दूसरी रात वो वहीं गुजारेंगे। 25 अगस्त की त्रुदशी रात्रि शिशनाग में और जबकि 26 और 27 अगस्त को पंचतरणी में रात का पड़ाव होगा। आखिरकार 28 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा के पावन दिन छड़ी मुबारक श्री अमरनाथ के पावन गुफा

0: पहुंचेगी, जहां बाबा बर्फानी के दर्शन, पूजा अर्चना और विशेष धार्मिक मंत्रों के साथ श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का रिवायती समापन होगा। छठी मुबारक की ये पवन जो परंपरा है सिर्फ हिंदू समाज के लिए ही नहीं है, जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं, बल्कि कश्मीर के मुकामी मुस्लिम समुदाय के लिए भी अपनी एक विशेष सांस्कृतिक और तारीखी अहमियत रखता है। मुकामी लोग सदियों से छठी मुबारक की रवानगी को सर्दियों के मौसम के आमद के एक अलामत के तौर पे देखते आए हैं। छठी मुबारक को श्री अमरनाथ जी यात्रा का एक गहरा धार्मिक और तारीखी संबंध है। यही वजह है कि श्री अमरनाथ जी यात्रा की परंपरा का आगाज और समापन छठी मुबारक के साथ ही होता है। और आप जानते हैं कि इस वक्त छठी मुबारक की जो गहमा गहमी पहलगाम में अशद उमद से जारी है, और इस वक्त जो है वहाँ जो बहुत सारे कश्मीरी पंडित इस वक्त भी वहाँ मौजूद है, जो इस उनकी जो उनके साथ श्री मुबारक के साथ जो महत बैठे हैं या उनके साथ जो साधु संत है उनके साथ वो महामंत्रों में ज्ञान करते रहते हैं आज मंदिर में, और वो आज रात फिर पहलगाम में रुकेंगे। तो इस तरीके से ये जो परंपरा है आगे बढ़ती रहेगी। जी
1: जी तारिक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और पवित्र छड़ी मुबारक के इस पवित्र सफर के बारे में हमारे श्रोताओं को बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी श्रोताओ, ये थे हमारे संवाददाता एस तारिक अनंतनाग से हमारे साथ जुड़ रहे थे और ये बता रहे थे कि कल शाम ही छड़ी मुबारक पहलगाम के गौरीशंकर मंदिर पहुंची, वहां कल रात्रि विश्राम और आज भी रात्रि विश्राम के लिए छड़ी मुबारक वहीं रुकेगी और कल सुबह आगे उसे रवाना कर दिया जाएगा और चंदनवाड़ी में एक रात्रि विश्राम के बाद 26 और 27 अगस्त की रात्रि विश्राम के लिए पंचतरणी में रुकेगी छड़ी मुबारक और 28 अगस्त यानी कि श्रवण पूर्णिमा के दिन पवित्र गुफा में पवित्र छड़ी मुबारक पहुंचेगी पदयात्रा के बाद और वहां महापूजन आरती और उसके बाद ही जो है इस वर्ष की श्री अमरनाथ जी यात्रा सफलपूर्वक संपन्न होगी।

श्रोताओं, हर वर्ष लाखों भक्त देश विदेश से सभी कठिनाइयों को भूलकर बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए श्री अमरनाथ जी यात्रा पर आते हैं। इस वर्ष 4,80,000 से ज़्यादा तीर्थयात्रियों ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए और जैसा कि आप जानते हैं, श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 अपने अंतिम और आखिरी पड़ाव पर है। छड़ी मुबारक की पद यात्रा कल से शुरू हो चुकी है। दोस्तों, छड़ी मुबारक की पदयात्रा केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं बल्कि आस्था, अनुशासन और सुरक्षा एक अद्वितीय संगम है। साधु संतों और मान जी की अगुवाई में जब भगवान शिव के पावन त्रिशूल का स्वरूप छड़ी मुबारक की पदयात्रा आगे बढ़ती है तो उनके साथ चलती है प्रशासन की एक मजबूत सुरक्षा चतरानी और बेहतरीन प्रबंधन। इस पावन पदयात्रा को हर तरह से सुरक्षित बनाने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और इंडियन आर्मी के जवान पूरे रास्ते पर तैनात हैं। सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन सर्वेलेंस के जरिए हर एक कदम पर कड़ी नजर रखी जा रही है। कठिन पहाड़ी रास्ते और कम होते ऑक्सीजन लेवल को देखते हुए पदयात्रा के साथ एक डेडिकेटेड मेडिकल टीम और मोबाइल ऑक्सीजन वैन लगातार चलती है। रास्ते में जगह जगह फर्स्ट एड सेंटर्स और एनडीआरएफ की डिजास्टर मैनेजमेंट टीम्स को भी तैनात किया गया है। रहने और खाने पीने की सुविधाओं की बात करें तो पहलगाम के गौरीशंकर मंदिर में जो रात्रि विश्राम के लिए जब हमारी छड़ी मुबारक रुकती है और आगे चंदनवाड़ी, शेषनाग और पंचतरणी के कैंप्स में प्रशासन द्वारा गर्म पानी, वाटरप्रूफ टेंट्स और पीने के साफ पानी का पुख्ता इंतजाम किया गया है। सभी साधु संतों और यात्रियों के लिए पावन लंगरों में शुद्ध और पौष्टिक भोजन की व्यवस्था की गई है। साथ ही रास्ते को साफ सुथरा रखने के लिए विशेष सफाई कर्मचारी दिन रात काम करते रहते हैं। श्रोताओं, सुरक्षा बलों के जवान और प्रशासन के सभी अधिकारी दिन रात एक करके इस छड़ी मुबारक की पद यात्रा को सफल और सुरक्षित बना रहे हैं। उनके इस समर्पण को हम सभी का कोटि कोटि प्रणाम। बोले के भक्तों, आप बिना किसी चिंता के श्रद्धा और विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहिए। भक्ति और सुरक्षा के इस पावन सफर में हम आपके साथ बने हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 के इस विशेष प्रसारण में। इस विशेष प्रसारण को आप सुनते हैं प्रतिदिन सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक।

श्वेतांशी अमरनाथ जी यात्रा का ये विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं FM बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़ के अलावा FM पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। इसके अलावा आप हमें YouTube की आकाशवाणी आराधना चैनल DTH की विभिन्न सर्विसेज OTT वेव्स प्लेटफॉर्म और न्यूज ऑन AIR की मोबाइल ऐप पर भी सुन रहे हैं। श्रोताओ, अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो हमारा एक फ़ोन नंबर है 9596990।

नौ पाँच चार एकमात्र हमारा हेल्पलाइन नंबर जिसके ज़रिए आप हम तक पहुंच सकते हैं। अगर आप इस विशेष प्रसारण के बारे में कोई बात करना चाहते हैं या श्यामाना जी यात्रा से जुड़ी कोई भी बात जानना चाहते हैं तो आप हमें इस फ़ोन नंबर के ज़रिए संपर्क कर सकते हैं। फ़ोन नंबर एक बार फिर से आपके साथ शेयर कर रहे हैं, फ़ोन नंबर है 9596990954 9596990954। ये हमारा फ़ोन नंबर है जिसके ज़रिए आप हम तक पहुंच सकते हैं, अपने विचार हम तक पहुंचा सकते हैं, मैसेजेस पहुंचा सकते हैं या कोई प्रश्न भी हमसे पूछ सकते हैं। जी श्रोताओं, हमारा एक ईमेल एड्रेस भी है akashvanibaltal@gmail.com, उस पर आप हमें मेल्स भेज सकते हैं और हम तक पहुंच सकते हैं। श्रोता, आपको बताते चले, ये विशेष प्रसारण आप प्रतिदिन सुनते हैं सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक, और आज के इस विशेष प्रसारण में मैं हूँ आपकी साथी उद्घोषिका इरम कुरैशी।

0: श्यामाना जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण। श्रोता अब बारी आपको आकाशवाणी दिल्ली लिए चलने की, जहां से आप समाचार सुनेंगे। समाचार प्रभात।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा मुख्यालय में पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों से वार्ता की। वंदे मातरम के सम्मान और संरक्षण के संबंध में प्रस्ताव पारित। सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए 12 मिनट की विज्ञापन सीमा समाप्त करने की अधिसूचना जारी की। विशाखापट्टनम में ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक आज। ब्रिटेन के सांसदों का संयुक्त राष्ट्र से पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सेना द्वारा निर्दोष लोगों की हत्या मामले में हस्तक्षेप का आह्वान। बंगाल की खाड़ी में मालवाहक जहाज डूबा, चालक दल के 24 सदस्य थे सवार। भारतीय तटरक्षक बल और नौसेना ने बचाव अभियान शुरू किया। और भारत की मानसी लाठर ने स्लोवाकिया में अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। तन्वी और कोमल को कांस्य पदक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की। श्री मोदी ने कहा कि संगठनात्मक बैठकें नए विचार और दृष्टिकोण पर आधारित होती हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इनका उद्देश्य पार्टी को मजबूत करना और लोगों के साथ जुड़ाव को बढ़ाना है।
2: एक सोशल मीडिया पोस्ट में नितिन नवीन ने कहा कि भाजपा ने वंदे मातरम की ऐतिहासिक विरासत के सम्मान और संरक्षण के संबंध में एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें पार्टी ने कांग्रेस कार्य समिति द्वारा 19 अगस्त को कांग्रेस कार्यक्रमों में वंदे मातरम के गायन को केवल पहले दो पैरा तक सीमित करने वाली वर्ष 1937 के प्रस्ताव को पुनः लागू किए जाने के निर्णय की कड़ी निंदा की। पार्टी ने राष्ट्रीय गीत के रूप में संपूर्ण वंदे मातरम के सम्मान, गरिमा, विरासत और राष्ट्रीय महत्व को बनाए रखने का संकल्प लिया। श्री नवीन ने कहा कि पार्टी भाजपा कार्यकर्ताओं के माध्यम से एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएगी। इसमें वंदे मातरम के इतिहास, राष्ट्रीय महत्व और गौरवशाली विरासत को देश के कोने कोने तक पहुंचाया जाएगा। आनंद और प्रिया के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए 12 मिनट की विज्ञापन अवधि की सीमा हटाने की अधिसूचना जारी कर दी है। ये निर्णय राजपत्र में केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 में संशोधन की अधिसूचना के साथ प्रभावी हो गया है। एक रिपोर्ट।
3: सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इससे पहले कहा था कि टीवी प्रसारण क्षेत्र में हुए बदलावों को देखते हुए विज्ञापन अवधि से संबंधित प्रावधानों पर पुनर्विचार करना आवश्यक था। बयान में कहा गया कि भारत में ये क्षेत्र विज्ञापन पर अत्यधिक निर्भर है, चाहे चैनल पेड हो या फ्री टू एयर। मंत्रालय का मानना है कि टेलीविजन उद्योग और डिजिटल मीडिया के बीच पर्याप्त प्रतिस्पर्धा है। टेलीविजन के लिए विज्ञापन अवधि सीमा 2006 में केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 के तहत लागू की गई थी। तब से लेकर आज तक टेलीविजन प्रसारण क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। उस समय टीवी चैनलों को प्रसारित करने के मुख्य माध्यम केबल टीवी की प्रसारण क्षमता सीमित थी और उपभोक्ताओं के पास बहुत कम विकल्प थे। केबल टीवी क्षेत्र के डिजिटलीकरण के बाद DTH, HISTV और IPTV सहित सभी प्लेटफॉर्म अब डिजिटल हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर रूस की 2 दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे। विदेश मंत्री व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की सह अध्यक्षता करेंगे। डॉक्टर सुब्रमण्यम रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से भेंट के दौरान क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज कोलकाता में गार्डन रीच बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड और यंत्र इंडिया लिमिटेड की 5 इकाइयों के भूमि पूजन समारोह में शामिल होंगे। शिलान्यास समारोह के बाद लघु और मध्यम उद्यमों के साथ एक संवाद सत्र भी आयोजित किया जाएगा। इसके बाद रक्षा मंत्री का युवा भारती क्रीड़ांगन में ईस्ट बंगाल FC और मोहन बागान सुपर जायंट्स के बीच डूरेंट कप का फाइनल मैच देखने का भी कार्यक्रम है। रक्षा मंत्री ने कहा है कि अहिंसा और शांति भारत की संस्कृति का अभिन्न अंग है और किसी को भी अहिंसा के इन मूल्यों को इसकी कमजोरी समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। श्री सिंह ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा कि देश की सुरक्षा, संप्रभुता और सम्मान की रक्षा करना सरकार की सर्वोपरि कर्तव्य है।
4: अहिंसा का अर्थ केवल इतना ही नहीं है कि किसी को की हत्या मत करो, किसी को मारा नहीं जाना चाहिए। अहिंसा का अर्थ है मन वचन और कर्म से किसी भी रूप से किसी को पीड़ा न पहुंचाई। अहिंसा के मूल्य को हमारी कमजोरी किसी भी सूरत में नहीं समझी जानी चाहिए। हमारे अहिंसा को गलत मत समझो, अहिंसा और शांति हमारी संस्कृति है।
1: रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने खरीफ और आगामी रबी मौसम के लिए उर्वरक विभाग की तैयारियों की कल समीक्षा की। नई दिल्ली में कल एक बैठक में उन्होंने कहा कि किसानों को उर्वरकों की निर्बाध और समय पर आपूर्ति करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत को विश्व की फार्मेसी की अपनी पहचान से आगे बढ़कर अनुसंधान नवाचार और उभरती प्रौद्योगिकियों के बल पर विश्व की प्रयोगशाला के रूप में उभरना होगा। भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद में स्वास्थ्य सेवा में एआई को बढ़ावा देना विषय पर आयोजित हेल्थ केयर समिट में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की परिवर्तनकारी क्षमता का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि एआई दवाओं की खोज में तेजी ला सकता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आज ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक होगी। इस मंत्री स्तरीय सम्मेलन में ब्रिक्स के सभी 11 देशों के मंत्री और प्रतिनिधिमंडल खेलों में आपसी सहयोग मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। इसमें खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से भी भाग लेंगी। कार्यक्रम में ब्रिक्स मैत्री साइकिलिंग प्रतियोगिता, द्विपक्षीय बैठक और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी शामिल होंगे। बैठक के समापन पर ब्रिक्स खेल संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 अनुकूलन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण विषय पर आधारित है। ब्रिटेन के 70 से अधिक सांसदों ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरस से पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बिगड़ती स्थिति पर हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। उन्होंने पाकिस्तानी सेना द्वारा निर्दोष लोगों की हत्या रोकने और नागरिकों की रक्षा के लिए कदम उठाने की मांग की है। इस क्षेत्र में पाकिस्तान की सेना की निर्मम कार्रवाई में सैकड़ों लोगों के मारे जाने और घायल होने के बाद यह अपील की गई है। इस क्षेत्र में कड़ी नाकाबंदी और कर्फ्यू के कारण संचार व्यवस्थाएं ठप हैं। इस बीच बलूचिस्तान के मस्तुंग जिले में बलूच यकजहती कमेटी ने आम नागरिकों पर पाकिस्तानी सेना के ड्रोन हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे सरकार प्रायोजित आतंकवाद करार दिया है। इसमें 4 लोग मारे गए और 3 अन्य घायल हो गए। BYC ने बताया कि शुक्रवार को मस्तुंग के खड़कुचा इलाके में एक ड्रोन हमले में 4 मजदूर मारे गए और 3 अन्य घायल हो गए। पनामा के ध्वज वाला एक मालवाहक जहाज कल बंगाल की खाड़ी में डूब गया। इनमें चीनी नागरिकों सहित चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। एक रिपोर्ट।
5: अधिकारियों ने बताया कि ओडिशा तट से लगभग 240 समुद्री मील दूर ये दुर्घटना हुई। जहाज MV ओशन विनर के चालक दल में चीन के 20, म्यांमार के 3 और एक बांग्लादेशी नागरिक सवार था। जहाज ओडिशा से करीब 72,000 मीट्रिक टन लौह अयस्क लेकर 20 अगस्त को पारादीप तट से सिंगापुर के लिए रवाना हुआ था। भारतीय तट रक्षक बल और भारतीय नौसेना ने बचाव अभियान शुरू कर दिया है। अब तक 2 लोगों को बचाया जा चुका है। समाचार से मैं पायल शर्मा।
1: भारतीय वायुसेना ने हाल ही में 2 अंतरराष्ट्रीय सैन्य अभ्यासों में सफलतापूर्वक भाग लिया है। इनमें ऑस्ट्रेलिया में पिच ब्लैक 2026 और मलेशिया में उदार शक्ति 2026 अभ्यास शामिल हैं। एक रिपोर्ट।
6: रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि 2 देशों के बीच इन अभ्यासों से भारतीय वायुसेना ने परिचालन क्षमता, उन्नत सामरिक समन्वय और हिंद प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक रक्षा साझेदारी और मजबूत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। मंत्रालय ने कहा है कि रॉयल ऑस्ट्रेलियन वायुसेना द्वारा आयोजित अभ्यास पिच ब्लैक के दौरान भारतीय वायुसेना ने अपने अग्रिम पंक्ति के राफेल विमानों के साथ 20 से अधिक भागीदारी देशों की वायुसेनाओं के साथ मिलकर अभ्यास किया। उधर मलेशिया में आयोजित सैन्य अभ्यास उदार शक्ति के दौरान भारतीय वायुसेना के चालक दल ने रॉयल मलेशियन वायुसेना के साथ मिलकर उच्च तीव्रता वाले लड़ाकू मिशन और संयुक्त सामरिक युद्ध अभ्यास किए। आरजू और प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने जयपुर में अखिल भारतीय आयुष स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा में हुई अनियमितताओं के लिए एडुकेटी करियर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। प्रभावित परीक्षार्थियों के लिए पुनर्परीक्षा अगले महीने की 1 तारीख को जयपुर में आयोजित की जाएगी। स्लोवाकिया में आयोजित अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवानों ने 3 पदक और जीत लिए हैं। मानसी लाठर ने रजत पदक और तन्वी गुंदेश मकदुम और कोमल ने कांस्य पदक हासिल किए। और भारत और श्रीलंका के बीच वर्तमान क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच आज कोलंबो में शुरू होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार सवेरे 10 बजे से खेला जाएगा। भारत पहला टेस्ट 165 रन से जीतकर श्रृंखला में 1-0 से आगे है। और अन्य खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
6: भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में कल विश्व एथलेटिक्स रजत स्तरीय प्रतियोगिता में भारत के रोहित यादव ने भाला फेंक और मुरली श्रीशंकर ने लंबी कूद स्पर्धाओं में जीत हासिल की। रोहित ने अपने छठे और अंतिम प्रयास में 87.68 मीटर का व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए खिताब अपने नाम किया। पुरुषों की लंबी कूद स्पर्धा में मुरली श्रीशंकर ने 8.07 मीटर की छलांग लगाकर पहला स्थान हासिल किया। महिलाओं की लंबी कूद में एनसी सोजान पहले, शैली सिंह दूसरे, जबकि मुबस्सिना मोहम्मद तीसरे स्थान पर रहीं। नाइजीरिया के चुकवू एबुका एनेक्वेची ने पुरुषों के शॉटपुट का खिताब जीता, जबकि इटली के जेन वियर दूसरे स्थान पर रहे। इसके अलावा खेल मंत्रालय ने अगले महीने से जापान में शुरू होने वाले एशियाई खेलों के लिए 492 सदस्यीय दल को मंजूरी दे दी है। इस बार एथलेटिक्स के सर्वाधिक 73 प्रतिभागियों को शामिल किया गया है।
1: मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और विदर्भ में दिनभर तेज वर्षा का अनुमान है। मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, केरलम, माहे और पूर्वोत्तर भारत में भी अगले 2 से 3 दिन तक इसी तरह के मौसम का अनुमान है। इस बीच अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में मंगलवार तक गरज चमक के साथ तूफान की आशंका है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
7: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी के नए पदाधिकारियों की नई दिल्ली में बैठक की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, भाजपा जेंजी से जुड़ेगी, 14 से 25 वर्ष के युवाओं से जुड़ने के लिए पार्टी अभियान चलाएगी। जनसत्ता का शीर्षक है, राष्ट्रगीत के सम्मान से किसी तरह का समझौता स्वीकार नहीं, भाजपा ने वंदे मातरम पर कांग्रेस के निर्णय की आलोचना की। अमर उजाला के अनुसार कांग्रेस के पूरा वंदे मातरम न गाने के खिलाफ प्रस्ताव पास, विकसित भारत का उद्घोष भी वंदे मातरम। दैनिक जागरण ने वंदे मातरम पर घिरी कांग्रेस शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, वंदे मातरम के दो ही पद गाने की कांग्रेस की जिद से ये साफ है कि सोनिया गांधी ने 15 अगस्त को पार्टी मुख्यालय पर उसके पूर्ण गायन पर आपत्ति जताई थी। पंजाब केसरी का शीर्षक है, गोरखा मुद्दे पर समझौते की तैयारी, सरकार ने गठित की समिति, चिकन नेक को मिलेगी अवैध सुरक्षा। गृहमंत्री अमित शाह, गोरखा नेताओं और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच हुई बैठक का उद्देश्य वर्तमान समस्याओं का समाधान करना। नवभारत टाइम्स ने विदेश मंत्री जयशंकर का बयान देते हुए लिखा है, पाक यूनिक आतंक फैलाता है, बोले चीन के साथ अच्छे रिश्ते दोनों के हित में। अमरीकी राजदूत सर्जियो गौर ने कहा, भारत यूएस संबंध ट्रंप और मोदी की दोस्ती पर आधारित। राजस्थान पत्रिका ने नया युद्ध शीर्षक से दिया है, ईरान की घेरेबंदी के बीच अमरीका में साइबर हमले, ड्रोन मिसाइलें शांत, अब यूएस और ईरान के बीच साइलेंट वॉर। अमर उजाला के अनुसार मुनीर के खिलाफ पाकिस्तानी सेना में असंतोष, रावलपिंडी की सुरक्षा बढ़ाई गई।

0: सैनिकों के संगठनों में भी बढ़ी नाराजगी, सुरक्षा बलों पर हमले को बताया कारण। दैनिक जागरण का शीर्षक है, 1 सितंबर से ई बोर्डिंग पास दिखाकर हो सकेगी विदेश यात्रा, एयरपोर्ट पर फिजिकल बोर्डिंग पास और स्टैंपिंग व्यवस्था खत्म होगी। दैनिक भास्कर ने खास खबर में दिया है, चैटबॉट नहीं बुजुर्ग सबसे बड़े लाइफ कोच, संकट में सर्च के बजाय संवाद करें, समाधान के साथ नया नजरिया भी मिलेगा। 1500 अमरीकी बुजुर्गों की युवाओं को सीख, जो हाथ में है उसी पर फोकस करें। दैनिक ट्रिब्यून के अनुसार कांगड़ा की अंशिका और प्रवीण राणा बने प्रेरणा स्रोत, एक साथ की LLB, बेटी टॉपर और पिता तीसरे स्थान पर। राजस्थान पत्रिका के अनुसार 3 साल बाद विदेश में टेस्ट सीरीज जीतने उतरेगी भारतीय टीम, श्रीलंका के साथ 2 टेस्ट की श्रृंखला में टीम इंडिया 1-0 से आगे।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा मुख्यालय में पार्टी के नव नियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों से वार्ता की, वंदे मातरम के सम्मान और संरक्षण के संबंध में प्रस्ताव पारित। सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए 12 मिनट की विज्ञापन सीमा समाप्त करने की अधिसूचना जारी की। विशाखापट्टनम में ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक आज। ब्रिटेन के सांसदों का संयुक्त राष्ट्र से पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सेना द्वारा निर्दोष लोगों की हत्या मामले में हस्तक्षेप का आह्वान। बंगाल की खाड़ी में मालवाहक जहाज डूबा, भारतीय तटरक्षक बल और नौसेना ने बचाव अभियान शुरू किया। और भारत की मानसी लाठर ने स्लोवाकिया में अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता, तन्वी और कोमल को कांस्य। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am VC Pramod, the headlines. Prime Minister Narendra Modi meets BJP's newly formed team at party headquarters in Delhi. Party passes resolution regarding honour and protection of historic legacy of Vande Mataram. Centre notifies removal of 12-minute advertisement duration cap for television channels. India to host BRICS sports ministers meeting at Vishakhapatnam in Andhra Pradesh today. British parliamentarians seek UN intervention to end bloodshed in POJK by Pakistani forces. Cargo ship with 24 crew members sinks in Bay of Bengal off Odisha coast. Indian Coast Guard and Navy launch rescue operation. And in wrestling, Mansi Lathar wins silver medal at Under-20 World Championships in Slovakia. Tanvi and Komal claim bronze medals. Prime Minister Narendra Modi held a meeting with the newly appointed national office bearers of the Bharatiya Janata Party at its headquarters in New Delhi yesterday. In a social media post, Mr. Modi said that organizational meetings are all about new ideas and perspectives aimed at strengthening the party and deepening its connect with the people. BJP President Nitin Nobin also held a meeting with the newly appointed national office bearers of the party. During the meeting, the BJP passed a resolution regarding the honour and protection of the historical legacy of Vande Mataram. A report.
3: BJP President Nitin Nabin said that the BJP team is committed to working with full dedication and devotion for expanding the base of the party to realize the resolve of Prime Minister Narendra Modi to make India a developed nation. In a social media post, Mr. Nabin said that in the resolution regarding the honor and protection of the historical legacy of Vande Mataram, the party has condemned and unequivocally opposed the decision taken by the Congress Working Committee on 19th of this month to reaffirm its 1937 resolution restricting the singing of Vande Mataram to its first two stanzas at Congress programs. He said that the party is resolved to undertake a nationwide campaign through BJP workers to take the history, meaning, national significance and glorious legacy of Vande Mataram to every corner of the country. Following the conclusion of the first meeting of the national office bearers, a national workshop was held with the state presidents, organization general secretaries, among others, for the Seva Sankalp Abhiyan. Briefing the media, BJP National General Secretary Vinod Tavre announced that the BJP will run a month-long nationwide Seva Sankalp Abhiyan to mark Prime Minister Narendra Modi's birthday on 17th of September. With Anandan Priya, Soumya Sharan, Akashwari News, Delhi.
2: The central government has notified the removal of the 12-minute advertisement duration cap for television channels. The decision has come into effect with notification of the amendment in the Cable Television Network Rules 1994 in the Gazette. Earlier, Information and Broadcasting Ministry said that in view of the changes that have occurred in the TV broadcasting sector, a need was felt to revisit the stipulations.

0: टेलीविजन नेटवर्क जवाबित 1994 में तरमीम को गजट में शाया किए जाने के बाद नाफिजुल अमल हो गया है। इससे कबल वजारत इत्तला व नशरियात ने कहा था कि टेलीविजन नशरियात के शोबे में आने वाली तब्दीलियों के पेश नज़र इश्तहारात की मुद्दत से मुतालिक मौजूदा जवाबित पर दोबारा गौर करने की जरूरत महसूस की गई थी। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
1: वजारत ने कहा है कि भारत में टेलीविजन नशरियात का शोबा वसी हद तक इश्तहारात पर मुनहसर है, खा वो पे चैनल हो या फ्री टू ईयर। वजारत ने मजीद कहा कि रिवायती टेलीविजन चैनल और डिजिटल मीडिया के दरमियान गैर मुसाबकती माहौल था, क्योंकि डिजिटल मीडिया पर इश्तहारात के दौरानिए की हद से मुतालिक ऐसी कोई पाबंदी आयद नहीं थी। केबल टेलीविजन नेटवर्क्स जाब्ते 1994 के तहत 2006 में पहली मरतबा टेलीविजन इश्तहारात के लिए दौरानिए की हद मुतारिफ की गई। इसके बाद से टीवी नशरियात के शोबे में नुमाया तब्दीलियाँ रूनुमा हुई हैं। वजारत के मुताबिक नशरियाती शोबे में नुमाया तब्दीलियाँ रूनुमा हुई हैं। 2006 में जहाँ सिर्फ 62 टीवी चैनल्स थे, वहाँ अब इनकी तादाद 900 से ज़्यादा हो गई है। पहले केबल टीवी टेलीविज़न चैनल्स की ज़रूरियात की बुनियाद का जरिया था और इसकी नशरियाती गुंजाइश महदूद थी, जिसके बाइस सारिफिन के पास पसंद या नापसंद का महदूद मौका था। आकाशवाणी दिल्ली से जिज्ञासा पांडे की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला।
0: भारत ब्रिक्स 2026 की अपनी सदारत के तहत आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स खेलों के वुजरा की मीटिंग की मेजबानी कर रहा है। नौजवानों के उमूर और खेलों के मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ब्रिक्स के तमाम 11 रुकन ममालिक के खेलों के वजीरों और वफूद के सरबराहान के साथ मीटिंग में शिरकत करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
2: ब्रिक्स मुल्कों के खेलों के वजीरों की मीटिंग का मकसद खेलों के जरिए ब्रिक्स मुल्कों के दरमियान तआवुन को मजीद मुस्तहकम करना और अवाम से अवाम के दरमियान करीबी राबते को फरोग देना है। मीटिंग में रिवायती और मकामी खेलों, खेलों की टेक्नोलॉजी और खेलों के साजो सामान की तैयारी पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। मीटिंग में ब्रिक्स के तमाम 11 रुकन ममालिक के नुमाइंदों के हुकूमती बयान, दो तरफा मीटिंगें और सकाफती सरगर्मियां भी शामिल होंगी। तवक्को है कि मीटिंग के अख्ताम पर खेलों से मुतालिक ब्रिक्स मुल्कों का मुश्तरका एलामिया मंजूर किया जाएगा। प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर शरीक मुल्कों के दरमियान दोस्ती, यकजहती और ताउन के जज्बे को फरोग देने के लिए आज सुबह सवेरे ब्रिक्स दोस्ती साइकिलिंग दौड़ का इनेकाद किया गया। विशाखापट्टनम में कल ब्रिक्स मुल्कों के नौजवानों के उमूर के खेल के वजीरों की मीटिंग मुश्तरका एलामे को मंजूर किए जाने के साथ इख्तिताम पजीर हुई। मीटिंग में नौजवानों के लिए तालीम, हुनरमंदी के फरोग, कारोबारी सरगर्मियों, जिद्दत तराजी और समाजी तरक्की के शोबों में मौके को उसत देने के इकदाम पर तबादला ख्याल किया गया। विशाखापट्टनम से अल्लू मुरली की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
0: केमिकल्स और खादों के मरकजी वजीर जगत प्रकाश नड्डा ने कल खरीफ के मौजूदा और आइंदा रबी सीजन के लिए खाद के महकमे की तैयारियों का जायजा लिया। नई दिल्ली में मुनक़िदा मीटिंग में महकमा खाद के सेक्रेटरी और आला अफसरान मौजूद थे। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब नड्डा ने कहा कि मुल्क में खाद की सूरत हाल इत्मीनान बख्श है। उन्होंने कहा कि किसानों को खाद की मुसलसल और बिला रुकावट फराहमी और बरवक्त दस्तयाबी को यकीनी बनाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। मरकजी वजीर मोहतरमा अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत को तहकीक, जिद्दत तराजी और उभरती हुई टेक्नोलॉजीज की बुनियाद पर दुनिया की फार्मेसी की अपनी शनाख्त से आगे बढ़कर दुनिया की तजर्बगाह के तौर पर उभरना चाहिए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद में मुनक़िद IIMA हेल्थ केयर समिट 2026 के तीसरे एडिशन से खिताब करते हुए मोहतरमा पटेल ने सेहत के शोबे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इनकलाबी सलाहियतों और उसके मुस्बत असरात को उजागर किया। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज से रूस का दो रोजा सरकारी दौरा करेंगे। वजीर मौसूफ तजारती, इकतसादी, साइंसी, तकनीकी और सकाफती ताउन से मुतालिक भारत रूस बैन हुकूमती कमीशन के 27वें इजलास की मुश्तरका तौर पर सदारत करेंगे। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। 70 से ज्यादा बरतानवी अरकान पार्लियामेंट ने अक्वामे मुत्तहदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस को खत लिखकर पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बिगड़ती सूरत हाल पर मुदाखलत करने की अपील की है। उन्होंने पाकिस्तानी फोर्सेस की जानिब से होने वाली खूनरेजी को रोकने और शहरियों की जानों के तहफ्फुज के लिए इकदाम करने का मुतालबा किया है। यह अपील मकबूजा इलाके में बढ़ते हुए तशद्दुद और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों के दरमियान सामने आई है, जहां पाकिस्तानी फोर्सेज की सख्त कार्रवाई में सैकड़ों अफराद हलाक और जख्मी हो चुके हैं। यह खिता इस वक्त भी सख्त नाकाबंदी, कर्फ्यू और मवासलात की मुकम्मल बंदिश का शिकार है। برطانوی قانون سازوں نے کہا کہ پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر کی تشویشناک صورتحال اب مسلسل بین الاقوامی توجہ اور کوششوں کی متقاضی ہے تاکہ کشیدگی میں کمی لائی جا سکے، جواب دہی طے کی جا سکے اور پرامن حل کی راہ

0: हमवार हो सके। उन्होंने अक्वामे मुत्तहिदा से भी अपील की कि वो पाकिस्तानी हुक्काम पर जोर दे के लोगों की मनमानी गिरफ्तारियों का खात्मा किया जाए, गिरफ्तार अफराद को कानूनी कार्रवाई का मुनासिब हक और कानूनी मदद तक रसाई दी जाए और मकबूजा इलाके में इंसानी हकूक के आज़ाद मुशाहिदीन को मुनासिब रसाई फराहम की जाए। हुकूक इंसानी के इदारे बलूच यकजहदी कमेटी ने बलूचिस्तान के मस्तंग इलाके में पाकिस्तानी फोर्सेस की जानिब से शहरियों पर किए गए ड्रोन हमले को सरकारी दहशतगर्दी का वाकया करार दिया है। जुमे को मस्तंग जिले के खड़कोचा इलाके में एक बागीचे पर ड्रोन हमले के बाद यह बयान सामने आया है। इस हमले में वहां काम करने वाले 4 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए जबकि 3 दीगर जख्मी हुए। पाकिस्तानी फिजाइया के जरिए बलूचिस्तान के सुराब जिले के गिदर इलाके में रिहायशी इलाके पर मुबैना अंधाधुंध बमबारी के महज चंद दिन के बाद यह हमला किया गया है। इस बमबारी में खवातीन और बच्चों समेत 30 से ज्यादा अफराद मारे गए थे। पनामा का एक परचम बरदार जहाज जिसमें अमले के 24 अफराद सवार थे कल खलीज बंगाल में डूब गया। इस जहाज में ज्यादातर अमला चीनी शहरियों पर मुश्तमिल था। हुक्काम ने बताया कि जहाज ओडिशा के साहिल से तकरीबन 240 बहरी मील दूर गर्कयाब हुआ। जहाज एमवी ओशन विनर पर सवार अमले में 20 अरकान चीन के, 3 म्यांमार के और 1 बांग्लादेशी शहरी शामिल थे। यह जहाज ओडिशा से तकरीबन 38,000 टन लोहे का खाम माल लेकर सिंगापुर जा रहा था। यह 20 अगस्त को रात तकरीबन 11:42 पर पारादीप बंदरगाह से रवाना हुआ था। भारतीय साहिल मुहाफिज दस्ते और भारतीय बहरिया ने इमदाद और बचाव की कार्रवाई शुरू कर दी है। अब तक 2 अफराद को बचाया जा चुका है। कनाडा के वजीर आजम मार्क कार्नी ने कहा है कि तिजारती मुजाकरात नाकाम होने के बाद कनाडा अमरीका की जानिब से आयद किए गए नए महसूल का जवाब डॉलर के बदले डॉलर से देगा और कनाडा अपने कारकुनों, किसानों, खानदानों और कारोबारों के तहफ्फुज के लिए अहद बस्ता है। भारतीय मौसमियात महकमे आईएमडी ने छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में आज शदीद से बहुत शदीद बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आईएमडी ने कहा कि मशरकी उत्तर प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, गंगा की तराई वाले मगरबी बंगाल और विदर्भ के इलाकों में आज शदीद बारिश के हालात रहने का इम्कान है। स्लोवाकिया में जारी 20 साल की उम्र तक की आलमी कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय खातून पहलवानों ने मुल्क के लिए मजीद 3 तमगे जीते। मानसी लाथर ने चांदी जबकि तनवी मकदुम, गंदेश मकदूम और कोमल ने कांसे के तमगे हासिल किए। 68 किलोग्राम जुमरे के फाइनल में मानसी लाथर को चीन की चैनलिंग सॉन्ग ने सख्त मुकाबले में 1-2 से शिकस्त दी जिसके बाद उन्हें चांदी के तमगे पर इक्तफा करना पड़ा। भारत ने कांसे के तमगों में मजीद 2 तमगे हासिल किए। 57 किलोग्राम जुमरे में तनवी ने कैनेडा की एग्निया को 10-4 से शिकस्त दी जबकि 59 किलोग्राम जुमरे में कोमल ने हंगरी की एडब्लेजिस को 5-2 से हराकर कांसे का तमगा जीता। क्रिकेट में भारत और मेजबान श्रीलंका के दरमियान दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच आज कोलंबो में शुरू होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक सुबह 10 बजे से खेला जाएगा। भारत ने पहला टेस्ट मैच 165 रन से जीता था और भारत को इस सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल है। भारतीय एथलीट्स रोहित यादव और मुरली श्री शंकर ने बिलतरतीब नेजा फेंकने और लॉन्ग जंप मुकाबलों में कामयाबी हासिल की। ये मुकाबले कल भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में होने वाले आलमी एथलेटिक्स सिल्वर लेवल कॉन्टिनेंटल टूर 2026 के तहत मुनाकिद हुए। रोहित यादव ने नेजा फेंकने के अपने छठे और आखिरी कोशिश में 87.68 मीटर की जाती तौर पर बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए यह खिताब अपने नाम किया। खवातीन के लॉन्ग जंप में कौमी रिकॉर्ड याफ्ता एनसी सोजन ने 6.71 मीटर की छलांग के साथ भारतीय खिलाड़ियों की शानदार कामयाबी का आगाज किया। शैली सिंह ने 6.56 मीटर के साथ दूसरे जबकि मुबसिना मोहम्मद ने तीसरे नंबर पर रहीं। नौमर एथलीट अबानिया राजाराजन ने भी नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए खातिन की 100 मीटर दौड़ में 11.34 सेकंड में फाते रहीं और 20 साल से कम उम्र का कौमी रिकॉर्ड दोबारा अपने नाम किया। और अब अखबारात के आईने के साथ हैं असदुल्ला।
1: शुक्रिया शबाना। कौमी राजधानी दिल्ली से शाई होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब और प्रताप समेत आज के सभी अखबारों ने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के सिलीगुड़ी के दौरे को खसूसियत के साथ शाये करते हुए लिखा है कि वजीर दाखिला अमित शाह ने सिलीगुड़ी में मगरबी बंगाल के पहाड़ी इलाकों के नुमाइंदों और दीगर मुतालिका फरीकों के साथ मीटिंग की और कहा कि आइन के दायरे में उनके मसाइल का जल्द से जल्द तस्फिया किया जाएगा। वजीर खारजा डॉक्टर ए जयशंकर आज रूस के 2 रोजा सरकारी दौरे पर रवाना होंगे जहाँ वो भारत रूस बैन हुकूमती कमीशन की मीटिंग में हिस्सा लेंगे। इस खबर को आज के सभी अखबारों ने अहमियत के साथ शाये किया है। रोजनामा इंकलाब की खबर है भारतीय बहरिया कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड कोची की जानिब से तैयार करदा तीसरा आबदोश

0: अमेरिकन जहाज मंगरोल सौंपा गया।
1: आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में पार्टी सदर दफ्तर में बीजेपी की नई तश्कील शुदा टीम से मुलाकात की। पार्टी ने वंदे मातरम की तारीखी विरासत के एहतराम और तहफ्फुज़ से मुतालिक एक करारदाद मंजूर की। मरकज ने टेलीविजन चैनलों पर इश्तिहारात के लिए 12 मिनट की हद खत्म करने को नोटिफाई किया है। भारत आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स के खेलों के वुजरा की मीटिंग की मेजबानी करेगा। बरतानवी पार्लियामेंट के अरकान ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी फोर्सेज की जानिब से होने वाली खुरेजी के खात्मे के लिए अक़वामे मुत्तहिदा से मुदाखलत करने का मुतालबा किया है। और इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।
2: श्यामाना जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़ के अलावा एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। इसके अलावा आप हमें सुन सकते हैं यूट्यूब की आकाशवाणी आराधना चैनल, वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म, डीटीएच की विभिन्न सर्विसेज तथा न्यूज़ ऑन एआईआर की मोबाइल ऐप पर। श्रोताओं, प्रतिदिन ये विशेष प्रसारण आप तक पहुंचता है सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक। श्रोताओं, हर साल लाखों भक्त देश विदेश से बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए श्री अमरनाथ जी यात्रा पर आते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि इस यात्रा से जुड़ी सभी सूचनाएं हम आप तक पहुंचा सकें। जैसा कि आप जानते हैं, कल 22 अगस्त को छड़ी मुबारक दशमी अखाड़ा श्रीनगर से रवाना हुई और कल शाम तक श्रीनगर और अनंतनाग के अलग अलग मंदिरों में पूजा अर्चना के बाद पहलगाम के गौरी शंकर मंदिर पहुंची। गौरी शंकर मंदिर में कल रात्रि विश्राम हुई। आज रात्रि विश्राम के बाद कल गौरी शंकर मंदिर से छड़ी मुबारक को रवाना कर दिया जाएगा चंदनवाड़ी की ओर, और चंदनवाड़ी से शेषनाग, शेषनाग से पंचतरणी और पंचतरणी के बाद 28 अगस्त श्रवण पूर्णिमा को पवित्र गुफा पहुंचेगी छड़ी मुबारक, जहां महापूजन और आरती के बाद ही इस अमरनाथ यात्रा 2026 का सफल व पूर्व संपन्न होगा। श्रोताओं, सबसे पहले बात करते हैं इस पवित्र गुफा के इतिहास की। सनातन धर्म और शिव पुराण के अनुसार ये पवित्र गुफा केवल एक स्थान नहीं बल्कि मोक्ष का द्वार है। इस पावन गुफा में भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को सृष्टि का सबसे बड़ा रहस्य यानी अमर कथा और तत्व ज्ञान दिया था। भगवान शिव नहीं चाहते थे कि ये गुप्त ज्ञान कोई आम प्राणी सुने, इसलिए उन्होंने गुफा की तरफ बढ़ते हुए अपनी सभी आभूषणों और गुणों को त्याग किया था। उन्होंने अनंतनाग में अपने नागों को छोड़ा, चंदनवाड़ी में अपने मस्तक के चंद्रमा को उतारा, शेषनाग में अपने गले के नाग को अलग किया, गणेश टॉप और पर अपने पुत्र गणेश जी को छोड़ दिया और पंचतरणी में पांचों तत्वों को त्याग दिया। आखिर में उन्होंने आग की ज्वाला से गुफा के चारों तरफ लकीर खींच दी ताकि कोई भी जीव अंदर ना आ सके और ये अमर कथा ना सुन सके। लेकिन मान्यता है कि गुफा के भीतर कबूतरों का एक जोड़ा था जिन्होंने ये अमर कथा सुन ली, और आज भी जो भक्त सच्चे दिल से सच्चे मन से बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जाते हैं वहाँ वो दो कबूतर अवश्य देखते हैं। इतिहास की बात करें तो वैदिक काल में भृगु ऋषि द्वारा इस पवित्र गुफा के दर्शन का उल्लेख मिलता है। जब कश्मीर घाटी पानी में डूब गई थी तब भृगु ऋषि ने सबसे पहले यहाँ भोलेनाथ के दर्शन किए थे। आधुनिक काल में 15वीं सदी के स्थानीय चरवाहे बूटा मलिक द्वारा इस पवित्र गुफा की खोज की कथा सनातन परंपरा में बेहद प्रसिद्ध और ऐतिहासिक मानी जाती है। श्रोताओं, श्री अमरनाथ यात्रा के बारे में, उसके इतिहास के बारे में हम आपसे बात कर रहे थे। और भी कुछ इस यात्रा से जुड़ी बातें आपके साथ हम ज़रूर बांटेंगे। फिलहाल आपको सुनवाते हैं ये रुद्रपाठ।
3: शास्त्रोक्त विधि पूर्वक रुद्र पूजन के पश्चात रुद्राभिषेक किया जाता है। रुद्राभिषेक वेद मंत्रों से मंडित शिव आराधना का विशेष आयोजन है। शिव के सहस्राधिक रूपों एवं नामों के उल्लेख के साथ रुद्राभिषेक किया जाता है। वैसे रुद्राभिषेक में सभी देवताओं की स्तुति का समावेश होता है तथा ये देवाधिदेव महादेव सहित सभी देवताओं को समर्पित होता है। विधिपूर्वक रुद्राभिषेक करने से बड़े संकट से मुक्ति मिलती है तथा रोग, शोक, हानि तथा राज्य भय का अंत होता है। रुद्राभिषेक मंत्र 8 अध्यायों में विभाजित है, जिसके अंत में सुख शांति की प्राप्ति हेतु स्वस्ति वाचन तथा शांति पाठ किया जाता है। रुद्राभिषेक शिव आराधना का सबसे महत्वपूर्ण पूजन विधान है।
4: ओम त्र्यंबकं हृदयाय नमः। ओम यजामहे सरसे स्वाहा। ओम सुगंधिं पुष्टिवर्धनं शिखा।

श्यामाना जी, यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण अब आप उर्दू में समाचार सुनेंगे। आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं बसारत कुल। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि तालीम को लेक्चर हॉल तक महदूद रखने के बजाय इसे अमली तजुर्बात से जोड़ने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हर तालिबे इल्म को तालीम मुकम्मल करने से कबल किसी मंसूबे पर काम करने का मौका भी मिलना चाहिए। वह IIM जम्मू के 10 साल मुकम्मल होने की तकरीब से खिताब कर रहे थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने तहकीक को इदारे की तरजीह करार देते हुए कहा कि इस इदारे को मुल्क के कारोबारी तकाजों पर मबनी केस स्टडीज तैयार करने और जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मुनफरद चैलेंजेस को तालीमी तहकीक का हिस्सा बनाने पर तवज्जो देनी चाहिए। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि तालीमी इदारे न सिर्फ तालीम याफ्ता लड़कियां बल्कि पुरएतमाद नौजवान ख़वातीन तैयार कर रहे हैं, जिनका एतमाद जम्मू कश्मीर के महफूज मुस्तकबिल की जमानत है। उन्होंने कहा कि तालीम का मकसद बच्चों को सिर्फ पैरवी और इताअत सिखाना नहीं, बल्कि उन्हें सवाल करने, आज़ादाना सोच रखने और अपने मुतालबात को उजागर करने के काबिल भी बनाना है। वो राजबाग श्रीनगर में एक तालीमी इदारे की सालाना दिन की तकरीब पर इजहार ख्याल कर रहे थे। इस मौके पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि बेटियों के लिए महफूज और मसावी माहौल फराहम करना माशरे की इज्तिमाई जिम्मेदारी है। सेहत व तिबी तालीम की वजीर सकीना ईतू ने कहा कि मौजूदा हुकूमत ही इलाकों में तिबी निगहदाश्त के बुनियादी ढांचे को मुस्तकम करने की वादाबंद है। उन्होंने कहा कि शहरियों के लिए मयारी और काबिल रसा सेहत खिदमात दस्तयाब कराने के लिए हुकूमत मुतअद्दिद इक़दामात कर रही है। वो कुलगाम के कलूरा DH पुरा में गवर्नमेंट आयुष डिस्पेंसरी की नई इमारत का इफ्ताह करने के मौके पर लोगों के एक इज्तिमा से खिताब कर रही थी। जंगलात और माहौलियात के वजीर जावेद अहमद राणा ने कहा है कि PM वन धन विकास योजना की अमलावरी से कबायली तबके के लिए रोजगार के ज्यादा से ज्यादा मौके पैदा होने के साथ साथ इस तबके की खवातीन को बाइख्तियार बनाने में भी मदद मिलेगी। वो जम्मू में एक आला सतह की मीटिंग के दौरान इस स्कीम की अमलावरी में पेशरफ का जायजा ले रहे थे। जम्मू कश्मीर के सरकारी कॉलेजों में इस साल अंडर ग्रेजुएट दाखिलों में 16% का इजाफा दर्ज हुआ है। रवा तालीमी सेशन के पहले मरहले में UT भर के 106 डिग्री कॉलेजों में अंडर ग्रेजुएट के लिए 47,150 तलबा ने दाखिला लिया है। डायरेक्टर कॉलेजेस डॉक्टर शेख एजाज बशीर ने कहा कि कौमी सतह पर आला तालीम के कई शोबों में दाखिलों के रुझान में कमी के तनाजुर में इजाफा खास अहमियत का हामिल है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस जस्टिस संजीव कुमार ने कहा है कि जोग्राफियाई फासले दुश्वार गुजार इलाकों में कभी भी इंसाफ की राह में रुकावट नहीं बनने चाहिए। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज डंगडार में कानूनी बेदारी से मुतल्लिक एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि इंसाफ की फराहमी का निज़ाम मुआशरे के हर तबके के लिए काबिल रसा होना चाहिए। जम्मू कश्मीर की रिवायती दस्तकारी सनत की खसूसियात को बरकरार रखने के लिए एक अहम पेशरफ्त के तहत महकमे हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम ने श्रीनगर में अपनी क्वालिटी कंट्रोल डिवीजन में QRGI कोड मैनेजमेंट सिस्टम का बाज़ाब्ता आगाज किया। इस अमल का मकसद हाथ से बनी मसनूआत की असलियत की तस्दीक करना और उन्हें मार्केट में मुनासिब कीमत दिलाना है। महकमे ने कारीगरों, बुनकरों और दीगर मुतल्लिकीन से कहा है कि वह अपनी मसनूआत पर लेबल लगवाएं ताकि कश्मीर की शानदार दस्तकारियों का ब्रांड वैल्यू बरकरार रखा जा सके। डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर सरताज अहमद शाह ने कहा कि महकमा बीज की अफजाइश के तमाम मराकज़ को मॉडल फार्मर्स में तब्दील करने के लिए पुरअज़म है। उन्होंने अफसरान को हिदायत दी कि वह काश्तकारी के मुख्तलिफ पहलुओं के लिए माहौल दोस्त हिकमत अमली मुरतब करें। वो सीड मल्टीप्लिकेशन

डलहौरी में बतौर लेक्चरर तैनात मोहम्मद अयाज रैना भी शामिल है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 5 सितंबर को यौम असातिज़ा के मौके पर विज्ञान भवन नई दिल्ली में असातिज़ा को यह अवार्ड अता करेंगे। और अब दर्जे हरारत, श्रीनगर में रात का कम से कम दर्जे हरारत 15.9 डिग्री जबकि जम्मू में रात का कम से कम दर्जे हरारत 21.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। तो ये थी अभी तक की खबरें। खुदा हाफिज। श्यामाना जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण जिसे आप सुन पा रहे हैं एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़ के अलावा एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। इसके अलावा देश विदेश से हमारे श्रोता हमें सुन पा रहे हैं वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म, यूट्यूब की आकाशवाणी आराधना चैनल, डीटीएच की सर्विसेज तथा न्यूज ऑन एआईआर की मोबाइल ऐप पर। श्रोताओं आइए नमक कम सुनते हैं।

श्रोताओं, आप नमकम चमकम सुन रहे थे श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण। आप सुन पा रहे हैं FM बालतल 103.7 MHz के अलावा FM पहलगाम 100.1 MHz पर। श्रोताओं, बारी है कुछ भजन सुनने की।

श्यामाना जी, यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं FM बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज के अलावा FM पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। इसके अलावा देश विदेश से हमारे श्रोता हमें सुन सकते हैं। यूट्यूब की आकाशवाणी आराधना चैनल, वेव्स OTT प्लेटफॉर्म, DTH की आराधना सर्विस तथा न्यूज़ ऑन AIR की मोबाइल ऐप पर। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, छड़ी मुबारक की पवित्र पद यात्रा कल शुरू हो चुकी है। कल 22 अगस्त है और शेड्यूल के हिसाब से दशमी अखाड़ा श्रीनगर से छड़ी मुबारक की पद यात्रा शुरू हुई। महंत पिंत्रगिरी जी की अगुवाई में छड़ी मुबारक की यात्रा कल से स्टार्ट हुई और कल शाम पहलगाम के गौरी शंकर मंदिर छड़ी मुबारक पहुंची। श्रीनगर और अनंतनाग के अलग अलग मंदिरों में पूजा अर्चना होने के बाद गौरी शंकर मंदिर पहुंचती है छड़ी मुबारक और कल तिथि के हिसाब से ही पूजा वगैरह गौरी शंकर मंदिर में हुई और कल रात्रि विश्राम के लिए छड़ी मुबारक जो है गौरी शंकर मंदिर पहलगाम में ही रुकी और आज रात्रि विश्राम के लिए भी छड़ी मुबारक गौरी शंकर मंदिर में ही विश्राम होगा और कल चंदनवाड़ी के लिए छड़ी मुबारक आगे रवाना होगी। पदयात्रा करते हुए आगे पहुंचेगी पंचतरणी। पंचतरणी में दो रात्रि विश्राम के बाद यानी 26 और 27 अगस्त की रात्रि विश्राम पंचतरणी में होगी। हालांकि हर वर्ष एक रात्रि विश्राम होता है पंचतरणी में, पर इस वर्ष दो रात्रि विश्राम के लिए छड़ी मुबारक को वहां रखा जाएगा और उसके बाद 28 अगस्त श्रावण पूर्णिमा के दिन छड़ी मुबारक पवित्र गुफा में प्रवेश करेगी। वहां महाआरती, महापूजन और विसर्जन के साथ श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का सफल पूर्वक संपन्न होगा। श्रोताओं, आप जानते हैं छड़ी मुबारक के बगैर श्री अमरनाथ जी की यात्रा अधूरी मानी जाती है और इसका शुरुआत भी छड़ी मुबारक की पूजा और आरती से ही होता है और श्री अमरनाथ जी यात्रा का संपन्न भी छड़ी मुबारक की पूजा से ही होता है और माना जाता है कि छड़ी मुबारक की जब पूजा अर्चना होती है, आखिरी पड़ाव जब होता है, महत्वपूर्ण पड़ाव अमरनाथ यात्रा का, उसके साथ कश्मीर में सर्दियां भी आती हैं और लोकल्स का ये मानना, स्थानीय लोगों का ये मानना है कि छड़ी मुबारक की जब पूजा अर्चना होती है, आखिरी पड़ाव जब स्टार्ट होता है श्री अमरनाथ जी यात्रा का, तो उसके साथ धीरे धीरे ठंड भी आती है और ऐसा ज्योग्राफिकल तिथियों से भी पता चलता है, ज्योग्राफी भी यही बताती है। और अगर हम मौसम विभाग की बात करें तो उन्होंने पूर्व सूचना दी थी कि वर्षा होगी और आज वर्षा हुई है। कल रात्रि से वर्षा जो है हर जगह हो रही थी। श्रीनगर में भी वर्षा हुई, अनंतनाग के कई जगहों पर भी वर्षा हुई और पवित्र गुफा के आसपास अभी बादल छाए हुए हैं। पर जैसा कि हम मौसम के बदलते मिजाज की बात कर रहे थे, तो क्योंकि छड़ी मुबारक की अभी पदयात्रा चल रही है, पूजा अर्चना हो रही है और उसके साथ साथ स्थानीय लोगों का ये मानना है कि उसके साथ सर्दी की शुरुआत भी होती है और मौसम ज़रा बदलता है, तो ऐसा लग रहा है कि मौसम अब बदल रहा है और गर्मी का जो मौसम था, उमस जो थी, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी जो थी, वो अब धीरे धीरे ख़त्म हो रही है और अब हल्का हल्का मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा और आने वाले दिनों में फिर सर्दियां भी आएंगी। जी श्रोताओं, श्री अमरनाथ जी यात्रा का ये विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं। अगर आप इस विशेष प्रसारण के साथ जुड़ना चाहते हैं, कोई प्रश्न है आपका श्री अमरनाथ जी यात्रा से रिलेटेड या हमारे इस विशेष प्रसारण से रिलेटेड आप कुछ बात करना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 9559699095495699094. हमारा ईमेल एड्रेस है akashvanibaltal@gmail.com। अगर आप कोई बात हमसे करना चाहते हैं तो आप हमें लिख भेज सकते हैं। जी श्रोताओं, आपको और कुछ भजन सुनाते हैं।

श्री अमरनाथ जी यात्रा का ये विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज के अलावा एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, कश्मीर की सुंदर वादियों में लगभग 3,888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा। ये वही स्थान है जहां भगवान शिव ने माता पार्वती को अमर होने की कथा सुनाई थी। और सबसे अनोखी बात, हर साल यहाँ स्वयंभू पवित्र शिवलिंग बनता है जिसे हम बाबा बर्फानी के नाम से पुकारते हैं और वहां के दर्शन करते हैं। श्रोताओं, इस वर्ष की ये यात्रा 3 जुलाई को आरंभ हुई थी और जैसा कि आप जानते हैं 28 जुलाई श्रावण पूर्णिमा के दिन अपने समापन को पहुंचेगी। यात्रा पर जाने के 2 मुख्य मार्ग हैं, पहलगाम वाला

पारंपरिक मुख्य मार्ग जो 48 किलोमीटर लंबा है, चंदनवारी, शिशनाग और पंचतरणी जैसे सुंदर स्थान मिलते हैं वहां से। और ये रास्ता थोड़ा आसान है पर समय ज़्यादा लगता है, 3 से 4 दिन लग जाते हैं उस पहलगाम वाले पारंपरिक मार्ग से पवित्र गुफा तक पहुंचने के लिए। और एक और मुख्य मार्ग है बालतल वाला मार्ग, छोटा रास्ता है लेकिन इसकी चढ़ाई काफ़ी सीधी है, दुर्गम पहाड़ों के बीच कठिन चढ़ाई करके हमारे तीर्थयात्री जो है बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा तक जाते हैं, माथा टेकते हैं। इसके लिए आपका शरीर स्वस्थ होना चाहिए और ख़ास तौर पर यंग लोग जो हैं वो इस रास्ते से जाना पसंद करते हैं। पर अगर आप चढ़ाई नहीं भी कर सकते हैं तो वहाँ पिट्ठू वाले होते हैं और पालकी वाले होते हैं जो आपकी मदद करते हैं यात्रा ट्रैक्स पर ऊपर जाने के लिए। श्रोता, अगर आप हर वर्ष इस यात्रा ट्रांसमिशन को सुनते हैं, इस विशेष प्रसारण को सुनते हैं, तो आप जानते हैं कि ये विशेष प्रसारण आप तक पहुंचता है। श्री अमरनाथ जी यात्रा से रिलेटेड सारी सूचनाएं हम आप तक पहुंचाते हैं। इस वर्ष भी हमारी यही कोशिश रही है कि हम आप तक यात्रा से जुड़ी सभी सूचनाएं पहुंचा सकें। अभी छड़ी मुबारक की पदयात्रा कल से शुरू हुई है। अभी छड़ी मुबारक पहलगाम के गौरी शंकर मंदिर में है और आज रात्रि विश्राम के बाद कल चंदनवाड़ी की ओर छड़ी मुबारक प्रस्थान करेगी। 28 अगस्त यानि श्रावण पूर्णिमा को छड़ी मुबारक पवित्र गुफा मंदिर पहुंचेगी। वहां महापूजन के बाद ही इस वर्ष की यात्रा का सफलपूर्वक संपन्न होगा। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, छड़ी मुबारक की पूजा के बगैर अमरनाथ यात्रा को अधूरा माना जाता है। अगर आप भी यात्रा पर जाना चाहते हैं तो अगले वर्ष की यात्रा के लिए आपको रजिस्ट्रेशन वगैरह करनी पड़ेंगी। श्री अमरनाथ जी की श्राइन बोर्ड है, श्राइन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट है www.jksb.nic.in। उस पर जाकर आप रजिस्ट्रेशन वगैरह के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं, सूचना हासिल कर सकते हैं। जो भी आपकी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है उस पर वो आपको मिल जाएगी, www.jksb.nic.in, श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट, जिस पर जाकर आप अगले वर्ष की श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन के बारे में जो भी प्रक्रिया है वो वहां से जानकारी हासिल कर सकते हैं। श्रोताओ, बाबा के दरबार तक पहुंचने के लिए तैयारी पक्की होनी चाहिए। कुछ जरूरी बातें जो आपको हमेशा याद रखनी है वो है स्वास्थ्य। यात्रा पर जाने से पहले हर दिन पैदल चलने की कोशिश करें, आदत डालें, क्योंकि जैसा आप जानते हैं ऊंचे ऊंचे पर्वतों के बीच आपको खड़ी चढ़ाई पर चढ़ना है, तब जाके आप बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा तक पहुंचेंगे और वहां पवित्र शिवलिंगम के दर्शन प्राप्त करेंगे। तो सबसे ज़रूरी बात स्वास्थ्य का ध्यान रखना और हर दिन पैदल चलना या जॉगिंग करना या एक्सरसाइज करना या व्यायाम करना। एक और बात है कंपल्सरी हेल्थ सर्टिफिकेट, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बहुत ही ज़रूरी है। इसके बिना यात्रा पर आने की अनुमति आपको नहीं मिलती है। तो कंपल्सरी हेल्थ सर्टिफिकेट आपको अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र से मिल जाएगा। अगले वर्ष अगर आप श्री अमरनाथ जी यात्रा पर आना चाहते हैं तो आपको इन सब बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। एक और तीसरी बात, सामान आप क्या लेंगे अपने साथ। गर्म कपड़े लेने हैं, बरसाती अच्छे जूते और ज़रूरी दवाइयाँ साथ रखना ना भूलें, क्योंकि आप जानते हैं पहाड़ी क्षेत्र में कभी भी वर्षा हो सकती है, मौसम कभी भी बदल सकता है। अभी धूप होगी और उसके कुछ ही क्षणों में बादल छा सकते हैं, बादलों के साथ साथ वर्षा भी होती है। तो अक्सर हमारे यात्रियों से हम हमेशा कहते हैं कि आप गर्म ऊनी कपड़े साथ रखें, बरसाती साथ रखें, छतरी साथ रखें और उसके बाद ही यात्रा पर आगे बढ़ें। और हमेशा शूज़ यानी कि जूते पहनकर ही यात्रा करना बहुत ही ज़रूरी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात रजिस्ट्रेशन, श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की तरफ से आपको एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। हर जगह पर रजिस्ट्रेशन डेस्क लगाए हुए हैं, चाहे वो भगवती नगर बेस कैंप जम्मू से लेकर नुनवन बेस कैंप पहलगाम या बालतल का जो दुमेल कंट्रोल गेट है वहाँ पर रजिस्ट्रेशन काउंटर्स लगे रहते हैं, वहाँ पे हमारे यात्री जो हैं रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके अलावा आप घर बैठकर भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं
और उसी रजिस्टर्ड डेट पर ही आपको यात्रा के लिए आगे आना है। अगले वर्ष की यात्रा के लिए अगर आप आना चाह रहे हैं और आप ऐसा प्लान कर रहे हैं तो ये कुछ ज़रूरी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, उसके बाद ही आप यात्रा पर आ सकते हैं। श्रोताओं, रास्ता कठिन हो सकता है, मौसम बदल सकता है, लेकिन जो भक्ति भक्तों के दिल में होती है उसके आगे हर मुश्किल आसान हो जाती है। जो एक बार बम बम बोले बोलकर आगे बढ़ता है, बाबा उसकी राह आसान कर देते हैं। तो अगर आप अगले वर्ष अमरनाथ यात्रा पर आना चाहते हैं तो आप सबको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है जो हमने आपके साथ अभी अभी बता दिए। श्रोताओं, इस विशेष प्रसारण के जरिए हमारी यही कोशिश रहती है कि श्री अमरनाथ जी की यात्रा से जुड़ी सभी सूचनाएं आप तक हम पहुंचा सके। अभी हम आपको ये बता रहे थे कि अगर आप अगले वर्ष इस यात्रा पर आना चाहते हैं, क्योंकि अभी श्री अमरनाथ जी की यात्रा जो है अपने अंतिम पड़ाव पर है, जहाँ छड़ी मुबारक की पूजा अर्चना होती है, पद यात्रा होती है छड़ी मुबारक की, तो अभी तो फिलहाल आप नहीं आ सकते। अब तो आपको अगले वर्ष ही आना होगा, क्योंकि अंतिम पड़ाव पर आपको आगे आने की अनुमति, आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। और 9 अगस्त से ही यात्रियों को आगे आने की अनुमति नहीं दी गई, क्योंकि यात्रा ट्रैक्स पर ज़रा मरम्मत काम बाकी थे। और अभी फ़िलहाल छड़ी मुबारक की यात्रा के लिए मरम्मत का काम हुआ है, यात्रा ट्रैक्स को रेस्टोर किया गया है और छड़ी मुबारक की पद यात्रा बिल्कुल अच्छे तरीके से हो रही है और अपने शेड्यूल्ड टाइम पर हो रही है। और एडमिनिस्ट्रेशन की कोशिश यही कि छड़ी मुबारक की पदयात्रा के लिए सभी सुविधाएं जितनी भी रखी गई हैं वो वहां पर उनको उपलब्ध कराई गई हैं, वो सभी ऑन ट्रैक हों और ऑन फुट है हर कोई, ताकि छड़ी मुबारक की पदयात्रा बिल्कुल सफल पूर्वक अपने अंजाम तक पहुँच सके, यानी कि पवित्र गुफा में 28 अगस्त को श्रवण पूर्णिमा के दिन अच्छे तरीके से पहुँच सके, जहाँ महाआरती पूजन के बाद ही इस वर्ष की यात्रा का सफलपूर्वक संपन्न होगा। जी हाँ श्रोताओ, अगर आप इस विशेष प्रसारण के जरिए हम तक कोई बात पहुंचाना चाहते हैं, इस विशेष प्रसारण से रिलेटेड कोई बात आपके दिल में हो तो आप हम तक पहुंच सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर 9596990954 या akashvanibaltal@gmail.com हमारा ईमेल एड्रेस है, जिसके ज़रिए आप हम तक कोई भी बात, कोई भी प्रश्न, कोई भी जानकारी, जो भी आप जानना चाहते हैं वो हमें लिख भेज सकते हैं। फिलहाल और कुछ भजन सुनते हैं।

श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण। इस विशेष प्रसारण को आप सुन पा रहे हैं FM बालतल 103.7 MHz के अलावा FM पहलगाम 100.1 MHz पर। इसके अलावा देश विदेश से हमारे श्रोता हमें सुनते हैं YouTube के आकाशवाणी आराधना चैनल, न्यूज़ ऑन AIR की मोबाइल ऐप, वेज OTT प्लेटफॉर्म तथा DTH की सर्विसेज पर। श्रोताओं, ये विशेष प्रसारण आप तक पहुंचता है प्रतिदिन सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक। इस विशेष प्रसारण के जरिए हमारी कोशिश रहती है कि श्री अमरनाथ जी यात्रा से जुड़ी सभी सूचनाएं हम आप तक पहुंचा सकें। श्रोताओं, आज 23 अगस्त है। ये यात्रा 3 जुलाई को आरंभ हुई थी इस वर्ष, और इस वर्ष 4,80,000 से ज़्यादा तीर्थयात्रियों ने बाबा बर्फानी के पवित्र गुफा में जाके माथा टेका, पवित्र शिवलिंगम के दर्शन प्राप्त किए। श्रोताओं, अभी छड़ी मुबारक की पदयात्रा जो है अपने शेड्यूल के मुताबिक आज गौरीशंकर मंदिर में रात्रि विश्राम के लिए रुकेगी और कल चंदनवाड़ी की ओर प्रस्थान करेगी, जहाँ एक रात्रि विश्राम के बाद आगे पंचतरणी की ओर अगली सुबह रवाना होगी। श्रोता, उसके बाद 26 और 27 अगस्त के दो रात्रि विश्राम के लिए पंचतरणी में रुकेगी छड़ी मुबारक। मंत दीपेंद्र गिरी जी ने यह बताया कि छड़ी मुबारक पंचतरणी में अक्सर एक रात्रि विश्राम के लिए रुकती है, पर इस वर्ष दो रात्रि विश्राम के लिए पंचतरणी में छड़ी मुबारक की विश्राम होगा और उसके बाद पवित्र गुफा में प्रवेश करेगी छड़ी मुबारक 28 अगस्त यानी अब से 5 दिन बाद श्रवण पूर्णिमा पे, जहां महापूजन, आरती और विसर्जन के साथ साथ ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का सफल पूर्वक संपन्न होगा। श्रोताओं, घाटी में हर हर महादेव और बम बम बोले के नारे गूंज रहे हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा के इस विशेष प्रसारण में अब बारी है आपको लिए चलने की आकाशवाणी दिल्ली, जहां से आप समाचार सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। उन्होंने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा में उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र का एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने और भविष्य बनाने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें।
1: बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक औरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के कार्य की भी सराहना की।

0: भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक एट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है।
1: आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की उल्लेखनीय उपलब्धियां देश की वैज्ञानिक उत्कृष्टता और नवाचार की भावना को आगे बढ़ाने के दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि नई वैश्विक व्यवस्था में भारत लगातार अपने अंतरिक्ष क्षेत्र का विस्तार कर रहा है। अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक उपलब्धि के साथ ही भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में अग्रणी देशों में शामिल हो गया है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आज ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक होगी। इस मंत्री स्तरीय बैठक में ब्रिक्स के सभी 11 देशों के मंत्री और प्रतिनिधिमंडल खेलों में आपसी सहयोग मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। इसमें खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से भी भाग लेंगी। इस दौरान ब्रिक्स मैत्री साइकिलिंग प्रतियोगिता और द्विपक्षीय बैठकें भी होंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड और यंत्र इंडिया लिमिटेड की 5 इकाइयों के भूमि पूजन समारोह में शामिल होंगे। शिलान्यास समारोह के बाद लघु और मध्यम उद्यमों के साथ एक संवाद सत्र भी आयोजित किया जाएगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर रूस की 2 दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे। विदेश मंत्री व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की सह अध्यक्षता करेंगे। डॉक्टर सुब्रमण्यम रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से भेंट के दौरान क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श करेंगे। सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए 12 मिनट की विज्ञापन अवधि की सीमा हटाने की अधिसूचना जारी कर दी है। ये निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इससे पहले कहा था कि टीवी प्रसारण क्षेत्र में हुए बदलावों को देखते हुए विज्ञापन अवधि से संबंधित प्रावधानों पर पुनर्विचार करना आवश्यक था। बयान में कहा गया कि भारत में यह क्षेत्र विज्ञापन पर अत्यधिक निर्भर है, फिर चाहे चैनल पेड हो या फ्री टू एयर। ब्रिटेन के 70 से अधिक सांसदों ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश को पत्र लिखकर पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बिगड़ती स्थिति पर हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। उन्होंने पाकिस्तानी सेना द्वारा निर्दोष लोगों के रक्तपात को रोकने और नागरिकों की रक्षा के लिए कदम उठाने की मांग की है। पनामा के ध्वज वाला एक मालवाहक जहाज कल बंगाल की खाड़ी में डूब गया। इसमें चीन के नागरिकों सहित चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। ओडिशा तट से लगभग 240 समुद्री मील दूर यह दुर्घटना हुई। भारतीय तटरक्षक बल और भारतीय नौसेना ने बचाव अभियान शुरू कर दिया है। अब तक 2 लोगों को बचाया गया है। दक्षिणी ट्यूनीशिया में प्रवासियों को ले जा रही एक नौका पलट जाने से 2 लोगों की मौत हो गई और 12 अन्य लापता हैं। एक व्यक्ति को बचा लिया गया है। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 2 विकेट पर 88 रन बना लिए हैं। मुकाबले में सारांश जैन भारत के लिए डेब्यू कर रहे हैं। श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Prime Minister Narendra Modi today said that space sector startups have shown their trust in the government. During an interaction with the startup CEOs of the space sector, Mr. Modi urged the CEOs to remain consistent in their efforts and build a robust space sector ecosystem capable of attracting talent from across the world.
3: दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी, भाई कौन है इसमें? क्योंकि एक जब ब्रेकथ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है। हमें ऐसा एक औरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूं जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
2: He noted that an enabling environment must be created in the country where people from across the world see India as the preferred destination to build their careers

श्रोता श्री अमरनाथ जी, यात्रा सिर्फ एक चढ़ाई या तीर्थ नहीं है, यह है आत्मा की परमात्मा से मिलन की यात्रा। श्रोताओ, बात करते हैं बाबा बर्फानी की इस पवित्र गुफा की पौराणिक कहानी, इसकी भक्ति और इस पावन धरती से जुड़े हर एक कण के महत्व की। श्रोताओ, पुराणों के मुताबिक जब माता पार्वती ने भगवान शिव से उनके अमर होने और सृष्टि के रहस्य के बारे में पूछा, तो महादेव ने उन्हें एक ऐसी जगह चुनी जहां कोई तीसरा जीव उस अमृत ज्ञान को ना सुन सके, और वो जगह थी हिमालय की ये पवित्र गुफा। बाबा भोले ने इस गुफा तक पहुंचते पहुंचते अपने सभी आभूषण और साथी त्याग दिए। अपने साथ नंदी को उन्होंने पहलगाम में छोड़ा, इसलिए पहलगाम को बेलगांव भी कहते हैं। चंद्रमा को चंदनवारी में अपनी जटाओं से अलग किया, शिशनाग को शिशनाग झील पर छोड़ दिया, और गणेश जी को महागुनस पर्वत पर विराजमान किया, और पंचतरणी में पांचों तत्वों को त्याग दिया। इसके बाद महादेव ने अमर कथा सुनाना शुरू किया, लेकिन कथा के दौरान माता पार्वती को नींद आ गई और गुफा में मौजूद दो कबूतरों के अंडों ने वो कथा सुन ली। ये कबूतर अमर हो गए, और कहा जाता है आज भी शिव भक्त पवित्र गुफा में उन अमर कबूतरों के जोड़े को देखते हैं। श्रोताओं, कश्मीर की लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित पवित्र गुफा में जल की बूंद बूंद टपकने से स्वयंभू बर्फ का शिवलिंग बनता है। आस्था ये है कि शिवलिंग चंद्रमा के आकार के साथ साथ बढ़ता और घटता है। शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तक ये अपने पूरे आकार में होता है। इस शिवलिंग के दर्शन से मन की शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिव जी के साथ साथ वहां माता पार्वती और गणेश जी के भी बर्फ के प्रतीक बनते हैं। ये है भक्ति और आस्था का प्रतीक।

श्यामला जी, यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण है। इस प्रसारण में हम बात कर रहे थे अमरनाथ यात्रा के इतिहास की। और श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस पवित्र गुफा की पुनः खोज कश्मीरी के चरवाहे एक बुटा मलिक ने की थी। इस पवित्र गुफा से जुड़ी एक बहुत ही खास ऐतिहासिक कहानी ये है। कई शताब्दियों तक लुप्त रहने के बाद 15वीं या 16वीं शताब्दी में बूटा मलिक नाम के एक स्थानीय मुस्लिम चरवाहे ने इस गुफा की पुनर्खोज की थी। इस घटना के बाद सदियों तक मलिक परिवार और हिंदू पुरोहित मिलकर यात्रा का प्रबंधन करते रहे। ये यात्रा कश्मीरियत और सूफी भक्ति परम्परा का जीता जागता प्रतीक है। कश्मीर की धरती पर ललेश्वरी जैसी शैव संत की शिव भक्ति और नुंद ऋषि जैसे सूफी संत की प्रेम आपस में घुल मिल रहा है। आज भी यात्रा के दौरान स्थानीय कश्मीरी मुस्लिम भक्तों की हर कदम पर मदद करते हैं, चाहे वो पालकी उठाना हो, घोड़े चलाना हो या उनकी सेवा करना हो। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं।

यात्रा के दो मुख्य मार्ग हैं। पहला है पहलगाम वाला मार्ग जो कि पुराना और लंबा है। इस रास्ते में चंदनवारी, शिशनाग और पंचतनी जैसे खूबसूरत पड़ाव आते हैं। ये रास्ता थोड़ा आसान है पर इसमें 2 से 4 दिन लग जाते हैं। और दूसरा रास्ता है बालतल से जो 14 किलोमीटर लंबा रास्ता है और छोटा रास्ता है, लेकिन खड़ी चढ़ाई करके ही हमारे तीर्थ यात्री जो हैं बाबा बर्फानी के पवित्र गुफा तक पहुँचते हैं, माथा टेकते हैं और पवित्र शिवलिंगम के दर्शन करते हैं। श्रोताओ, इस विशेष प्रसारण में आपको हम भजन सुनवा रहे हैं, आइए ये सिलसिला जारी रखते हैं।

श्यामला जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण आप सुन पा रहे हैं एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज के अलावा एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। इसके अलावा देश विदेश से हमारे श्रोता हमें सुन पाते हैं आकाशवाणी की आराधना चैनल, न्यूज ऑन एयर की मोबाइल ऐप, वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म तथा डीटीएच सर्विसेज पर। श्रोताओं, प्रतिदिन आप ये विशेष प्रसारण सुनते हैं सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक। अभी तक आप ये विशेष प्रसारण सुन रहे थे आपकी साथी इरम कुरैशी के साथ। अब हमारी साथी उद्घोषिका पजमान हमारे साथ जुड़ रही हैं। शाम 6 बजे तक आप इनके साथ ये विशेष प्रसारण सुनेंगे।

विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे FM बालतल 103.7 MHz पर और FM पहलगाम 100.1 MHz पर। न्यूज़ ऑन एयर की आराधना चैनल DTH और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी हम उपलब्ध हैं। मैं आपके उद्घोष का पजमान फेरोज आपकी सेवा में जुड़ चुकी हूँ अभी से लेकर शाम 6 बजे तक।

0: विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 आप समाप्त करें FM बालतल 103.7 MHz पर, FM पहलगाम 100.1 MHz पर। श्रोताओं आपको आकाशवाणी दिल्ली लिए चलेंगे जहां से आप समाचार समाप्त करेंगे। 19 किलोहर्ट्ज़ DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर 1 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप समाचार हिंदी और अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा में श्री मोदी ने निरंतर प्रयत्नशील रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र का एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें।
2: बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक औरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
1: प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के कार्य की भी सराहना की।
3: भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक एट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है।
1: स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी स्काईरूट एयरोस्पेस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवन कुमार चांदना ने अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अंतरिक्ष तकनीक

0: विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने और भारत को 45 अरब डॉलर की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आज अहमदाबाद में तीसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र के सुधारों से स्टार्टअप और उद्योग जगत के लिए अवसर बढ़े हैं। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आज ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक होगी। इस मंत्री स्तरीय बैठक में ब्रिक्स के सभी 11 देशों के मंत्री और प्रतिनिधिमंडल खेलों में आपसी सहयोग मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। इस दौरान ब्रिक्स मैत्री साइकिलिंग प्रतियोगिता और द्विपक्षीय बैठक भी होगी। ब्रिक्स युवा अलायंस ने आज लगातार दूसरे दिन ब्रिक्स और ग्लोबल साउथ विषय पर चर्चा का आयोजन किया। ये ऑनलाइन चर्चा मुख्यतः वैश्विक शासन व्यवस्था में सुधार पर केंद्रित थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज कोलकाता में गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड और यंत्र इंडिया लिमिटेड की 5 इकाइयों के भूमि पूजन समारोह में शामिल होंगे। शिलान्यास समारोह के बाद लघु और मध्यम उद्यमों के साथ एक संवाद सत्र भी आयोजित किया जाएगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर रूस की 2 दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे। विदेश मंत्री व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की सह अध्यक्षता करेंगे। डॉक्टर सुब्रमण्यम रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव से भेंट के दौरान क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हॉर्मुज जल डमरू मध्य को एक बार फिर अमरीकी इलाका बताए जाने के बाद से अमरीका और ईरान के बीच तनाव और बढ़ गया है। इस बीच ईरान ने फिर कहा है कि जब तक अमरीका अपना रुख नहीं बदलता हॉर्मुज बंद रहेगा। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहसिन रेजाई ने हॉर्मुज पर अमरीकी दावों को खारिज करते हुए ट्रंप के बयानों की कड़ी आलोचना की। ये बयान ऐसे समय में आया है जब अमरीका ईरान पर और अधिक आर्थिक प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रहा है। पनामा के ध्वज वाला एक मालवाहक जहाज कल बंगाल की खाड़ी में डूब गया। इसमें चीन के नागरिकों सहित चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। ओडिशा तट से लगभग 240 समुद्री मील दूरी पर यह दुर्घटना हुई। जापान में राजधानी टोक्यो के उत्तर पूर्वी प्रांत इबाराकी में आज तड़के 5.9 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप का केंद्र 70 किलोमीटर की गहराई में था। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 2 विकेट पर 105 रन बना लिए हैं। एफआईएच हॉकी विश्व कप में आज रात 10:30 बजे भारतीय महिला टीम का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। सेमीफाइनल की दौड़ में बने रहने के लिए भारत को पूल ई का यह मुकाबला हर हाल में जीतना होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani. The news read by Anuja Kumar. India is celebrating National Space Day today. The country observes the day to commemorate the historic soft landing of Chandrayaan 3 on the lunar South Pole in 2023, making India the first country to achieve the feat. Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have extended their greetings on the occasion. Prime Minister Narendra Modi, while sharing a video on social media, said, "In the new global order, India is continuously expanding its space sector." Mr. Modi said that India's space sector is a magnet for global investors. He said that India has resolved to become a developed nation by 2047 and the space sector will play a pivotal role in realizing this vision. The Prime Minister also noted that India's private space talent is creating its own unique identity across the world. Prime Minister Modi today said that space sector startups have shown their trust in the government. During an interaction with the startup CEOs of the space sector, Mr. Modi urged the CEOs to remain consistent in their efforts and build a robust space sector ecosystem capable of attracting talent from across the world.
2: दुनिया भारतीय स्टार्टअप को खोजती होगी, भाई कौन है इसमें? तो एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है। हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूँ जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
1: On the occasion, Union Minister of State for Science and Technology, Dr. Jitendra Singh, has recalled the historic

विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026। आप समाप्त करें एफ एम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर, एफ एम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताएं आपको आकाशवाणी दिल्ली लिए चलेंगे, जहां से आप समाचार समाप्त करेंगे उर्दू, अंग्रेज़ी और हिंदी में।

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं महताब आलम। वजीरे आजम नरेंद्र मोदी ने खला के शोबे के स्टार्टअप इदारों पर जोर दिया है कि वो आलमी सतह पर हुनरमंद अफराद को रागिब करने के लिए मजबूत इको निज़ाम तैयार करें। वजीर आजम ने खला के कौमी दिन के मौके पर मुबारकबाद दी है। ब्रिक्स मुल्कों के खेलों के महकमे के वजीरों की मीटिंग आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम में जारी है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर रूस के 2 दिन के दौरे पर जा रहे हैं। छत्तीसगढ़, उड़ीसा और सहेली आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश के इम्कान के मद्देनज़र ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ईरान ने पड़ोसी मुल्कों को अपने खिलाफ अमरीका की इकतसादी मुहिम में शामिल होने के खिलाफ खबरदार किया है। क्रिकेट में भारत और मेज़बान श्रीलंका के दरमियान सीरीज का दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच कोलंबो में जारी है। और FIH हॉकी वर्ल्ड कप में भारतीय खवा टीम का मुकाबला आज रात ऑस्ट्रेलिया से होगा। सेमीफाइनल में पहुंचने की अपनी उम्मीद बरकरार रखने के लिए भारत को यह मैच जीतना होगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खला के शोबे के स्टार्टअप इदारों ने सरकार में अपने एतमाद और भरोसे का इजहार किया है। खला के शोबे के स्टार्टअप CEOs के साथ गुफ्तगू के दौरान जनाब मोदी ने उन पर जोर दिया कि अपनी कोशिशों में तसलसल बरकरार रखें और खला के शोबे का एक ऐसा मजबूत इको निज़ाम बनाएं जो दुनिया भर से बासलाहियत अफराद को रागिब करने की सलाहियत रखता हो। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क में एक ऐसा साजगार माहौल तैयार किया जाना चाहिए जहां दुनिया भर के लोग खला के शोबे में अपना कैरियर और मुस्तकबिल बनाने के लिए भारत को तरजीही मुल्क के तौर पर देखें।
1: दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी, भाई कौन है इसमें, तो ये जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
0: जनाब मोदी ने कहा कि लागत और खर्च के एतबार से भारत इंतहाई मुसाबकती मुल्क है और जोखिम उठाने की मजबूत सलाहियत के साथ उसके पास बासलाहियत अफराद भी हैं। वजीर आजम ने कहा कि ये इम्तियाज मुल्क को आलमी सतह पर खला के शोबे में एक सरकर्दा मुल्क के तौर पर तेजी के साथ खुद को कायम रखने की कुव्वत बख्शता है।
1: एक नए क्षेत्र में साहस दिखाया है सब।

0: बड़ी बात है कि आपने सरकार की बात पे भरोसा किया। जो भी हम निर्णय करें हम उसमें कंसिस्टेंट रहे और ये विश्वास पैदा करने का हमारा प्रयास है।
1: पेश है एक रिपोर्ट।
2: मुल्क आज खाला का कौमी दिन मना रहा है। ये दिन हर साल 23 अगस्त को चांद पर चंद्रयान स्वयं के कामयाबी से उतरने की याद में मनाया जाता है। 2023 में आज ही के दिन ये खलाई जहाज चांद के जनूबी कुतुब खत्ते के नज़दीक उतरा था। इस तारीखी वाक़े के बाद भारत ये कामयाबी हासिल करने वाला दुनिया का पहला मुल्क और खला से मुतालिक शोबों में काम करने वाले दुनिया के सरकर्दा मुल्कों में शामिल हो गया। खला के कौमी दिन के मौके पर न सिर्फ एक तारीखी कामयाबी का जश्न मनाया जाता है बल्कि यह दिन नौजवान नस्ल को खलाई साइंस और इख्तरा की जानिब रागिब करने का एक मौका भी फराहम करता है। सकलैन अख्तर की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं अब्दुल मालिक।
1: नायब सदर जमहूरिया सीपी राधा कृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज खला के कौमी दिन के मौके पर मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब राधा कृष्णन ने कहा कि खला के शोबे में दरियाफ्त के काम में भारत की काबिल कदर कामयाबियां मुल्क के साइंसी कारकर्दगी इख्तराक के जज्बे और इल्म के हुसूल के तई लगन और अज़्म की अक्कासी करती हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए कहा कि नए आलमी निज़ाम में भारत अपने खला के शोबे को लगातार उसत दे रहा है। जनाब मोदी ने कहा कि आज जेन जी इंजीनियर्स डिज़ाइनर्स और साइंसदान नई नई टेक्नोलॉजियाँ तैयार कर रहे हैं। आज खला के कौमी दिन के मौके पर साइंस और टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने चंद्रयान 3 की तारीखी कामयाबी को याद किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर डॉक्टर सिंह ने 23 अगस्त 2023 के उस लम्हे का तذکرہ किया जब चंद्रयान 3 चांद के कुतुब जनूबी के खत्ते पर कामयाबी के साथ उतरा था। उन्होंने कहा कि इस कामयाबी से भारत खला के शोबे में दुनिया के सरकर्दा मुल्कों में शामिल हो गया था। साथ ही उन्होंने भारतीय साइंसदानों की काबिल कदर खिदमात की सताइश भी की। ब्रिक्स मुल्कों के खेलों के महकमे के वजीरों की मीटिंग आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम में जारी है। नौजवानों की उमूर और खेलों के महकमे के मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया और इसी महकमे की वजीर ममलिकत रक्षा निखिल खडसे ने सभी 11 ब्रिक्स मेंबर मुल्कों के खेलों के महकमे के वजीरों और वफूद के सरबराहों का खैर मकदम किया। वजारती इजलास में खेलों के जरिए ब्रिक्स मुल्कों के माबैन इश्तराक को मुस्तहकम बनाने पर तवज्जो मरकूज की जा रही है। विशाखापट्टनम में कल ब्रिक्स मुल्कों के नौजवानों के उमूर के वजीरों की मीटिंग हुई थी जो मुश्तरका बयान मंजूर करने के साथ ख़त्म हो गई। नौजवानों की उम्र और खेलों के महकमे के मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने तंदुरुस्ती और माहौलियात के लिए साइकिलिंग के फ़ायदों को उजागर करते हुए इसे सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी का बाजाबता हिस्सा बनाए जाने पर जोर दिया है। आज विशाखापट्टनम में ब्रिक्स दोस्ती साइकिलिंग प्रोग्राम के बाद नमानिगारों से बात करते हुए डॉक्टर मांडविया ने कहा कि साइकिलिंग फिट इंडिया तहरीक का लाजमी हिस्सा है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की संडे ऑन साइकिल पहल का मकसद लोगों को साइकिलिंग अख्तियार करने और तंदुरुस्ती के कल्चर को फ़रोग देने की हौसला अफजाई करना है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर खारजा डॉक्टर रहजा शंकर आज से रूस का दोरोज़ा सरकारी दौरा करेंगे। वजीर मौसूफ तजारती इकतसादी साइंसी तकनीकी और सकाफती इश्तराक से मुतालिक भारत रूस बैन हुकूमती कमीशन के 27वें इजलास की मुश्तरका तौर पर सदारत करेंगे। दौरे के दौरान डॉक्टर जयशंकर रूस के वजीर खारजा सेर्गी लाफरूफ से भी मुलाकात करेंगे और इलाकाई व आलमी उमूर पर तबादले ख्याल करेंगे। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज छत्तीसगढ़ उड़ीसा और वस्ती आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश के इम्कान के मद्देनज़र ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसमियात महकमे ने अरुणाचल प्रदेश आसाम मेघालय साहली कर्नाटक मशरकी उत्तर प्रदेश गंगा की तराई वाले मगरबी बंगाल और झारखंड में भी कहीं कहीं तेज़ बारिश होने की पेशगोई की है। इधर कौमी राजधानी दिल्ली के बाद हिस्सों में आज सुबह हल्की से लेकर औसत बारिश हुई। मौसमियात महकमे के मुताबिक शहर में बेशतर मकामात पर हल्की से लेकर बहुत हल्की बारिश और कहीं कहीं औसत बारिश हो सकती है। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी मोहसिन रजाई ने हमसाया मुल्कों को तंबीह की है कि ईरान के खिलाफ अमेरिका की इक्तसादी मुहिम में शामिल न हो। उन्होंने कहा है कि अगर पड़ोसी मुल्क इसमें शामिल होते हैं तो ईरान उन्हें अपना दुश्मन तसव्वुर करेगा। IRIB के साथ एक इंटरव्यू में जनाब रजाई ने कहा कि ईरान कशीदगी नहीं बढ़ाना चाहता, लेकिन साथ ही उन्होंने खबरदार किया कि अगर हमसाया मुल्कों ने अमेरिका के इक्तसादी दबाव डालने के इकदाम की हमायत की तो ईरान जवाबी कार्रवाई करेगा। उन्होंने ये वार्निंग भी दी कि अगर खित्ते के मुल्क अमेरिका की मुहिम में शामिल होते हैं तो ईरान खलीज फारस और आबनाए हुरमुस से तेल की बरामदात को रोक सकता है।

0: section. The hosts have also been forced into changes. Dinesh Chandimal has been ruled out after suffering a concussion, while Nishan Madhushka has been dropped. Kamil Mishra is making his debut, while Pasindu Suryabandara also returns to the playing 11. In the FIH Hockey World Cup, the Indian women's team will take on Australia tonight. India must win this match to stay in contention for a semi-final berth. The Pool E match will begin at 10:30 p.m. India's qualification will also depend on the result of the earlier match between China and the Netherlands. India need China to lose that match. If China win, India will be eliminated even with a win over Australia. Law and Justice Minister Arjun Ram Meghwal today highlighted the need to reduce manual intervention in sanitation work through mechanization. Speaking at the Foundation Day celebrations of the National Commission for Safai Karmcharis in New Delhi, Mr. Meghwal stressed the importance of safety measures, protective equipment, training, health insurance and proper monitoring. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi urges space startups to build robust ecosystem and attract global talent, extends greetings on National Space Day. BRICS Sports Ministers meeting underway in Visakhapatnam, Andhra Pradesh. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar to embark on a two-day visit to Russia today. Orange alert for heavy to very heavy rainfall issued for isolated places over Chhattisgarh, Odisha and coastal Andhra Pradesh today. Iran warns neighbours against joining US economic campaign against Tehran. In cricket, second and final test match of the series between India and host Sri Lanka underway in Colombo. And in the FIH Hockey World Cup, Indian women to take on Australia in a must-win match for a semi-final berth tonight. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष स्टार्टअप्स से मजबूत इकोसिस्टम बनाने की अपील की ताकि वे वैश्विक प्रतिभाओं को आकर्षित कर सकें। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की शुभकामनाएं दी। ब्रिक्स देशों के खेल मंत्रियों की बैठक आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में जारी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज दो दिवसीय रूस दौरे पर रवाना होंगे। छत्तीसगढ़, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। ईरान ने पड़ोसी देशों को आगाह किया कि वे अमरीकी आर्थिक अभियान में शामिल न हो। भारत और श्रीलंका के बीच क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा और अंतिम टेस्ट मैच कोलंबो में जारी और हॉकी विश्व कप में आज भारतीय महिला टीम का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से। सेमीफाइनल की दौड़ में बने रहने के लिए भारत के लिए मैच जीतना जरूरी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। उन्होंने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा में उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र का एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें।
2: दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी, वे कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक औरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
1: प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के कार्य की भी सराहना की।
3: भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है।
1: स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी स्काई रूट एयरोस्पेस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवन कुमार चांदना ने अंतरिक्ष

0: क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने पर प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। श्री चांदना ने बताया कि उनकी कंपनी ने 3 कारखाने स्थापित किए हैं। इस वर्ष 18 जुलाई को श्री चांदना की कंपनी ने भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की उल्लेखनीय उपलब्धियां देश की वैज्ञानिक उत्कृष्टता और नवाचार की भावना को आगे बढ़ाने के दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि नई वैश्विक व्यवस्था में भारत लगातार अंतरिक्ष क्षेत्र का विस्तार कर रहा है। अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक उपलब्धि के साथ ही भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में अग्रणी देशों में शामिल हो गया है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अंतरिक्ष तकनीक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने और भारत को $45 अरब की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आज अहमदाबाद में 3rd राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र के सुधारों से स्टार्टअप और उद्योग जगत के लिए अवसर बढ़े हैं।
1: माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्पेस साइंस की इस विधा को प्राइवेटाइजेशन करके भारत के लिए अपार संभावनाओं का द्वार सृजित किया गया और जिस तरह की क्षमता प्रोफेसर साराभाई से लेकर के आज तक भारत के महान वैज्ञानिकों ने जिस तरह का मुकाम हासिल किया है, भारत जो आज एक मजबूत स्थिति में इस क्षेत्र में खड़ा है, आने वाले समय में विश्व का अग्रणी और लीडरशिप स्टेटस को प्राप्त करेगा।
0: कार्यक्रम में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन और अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र के निदेशक वीएन राव भी उपस्थित थे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: देश आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मना रहा है। हर वर्ष 23 अगस्त को यह दिन चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग की स्मृति में मनाया जाता है। वर्ष 2023 में इस दिन चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र के निकट सफलतापूर्वक लैंडिंग की थी। इस उपलब्धि के साथ भारत ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया और साथ ही विश्व की अग्रणी अंतरिक्ष शक्तियों में अपनी जगह बनाई। संचार और मौसम पूर्वानुमान से लेकर नेविगेशन और आपदा प्रबंधन तक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी लोगों के दैनिक जीवन में लगातार महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक इस समय आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम में चल रही है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया, राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से ने ब्रिक्स के सभी 11 सदस्य देशों के खेल मंत्रियों और शिष्टमंडल के प्रमुखों का स्वागत किया। बैठक में ब्रिक्स देशों के बीच खेलों के माध्यम से सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की जा रही है। बैठक के अंत में साझा घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। ब्रिक्स युवा अलायंस ने आज लगातार दूसरे दिन ब्रिक्स और ग्लोबल साउथ विषय पर चर्चा का आयोजन किया। ये ऑनलाइन चर्चा मुख्यतः वैश्विक शासन व्यवस्था में सुधार पर केंद्रित थी। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने स्वस्थ जीवन शैली के लिए साइकिल चलाने को अपनी दिनचर्या में शामिल करने की अपील की है। डॉक्टर मांडविया ने आज विशाखापट्टनम में ब्रिक्स मैत्री साइकिलिंग कार्यक्रम के बाद मीडिया से कहा कि साइकिल चलाना फिट इंडिया आंदोलन का अभिन्न हिस्सा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर रूस की 2 दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे। विदेश मंत्री व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की सहअध्यक्षता करेंगे। डॉक्टर सुब्रमण्यम रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोफ से भेंट के दौरान क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से 27 अगस्त तक जापान की 4 दिन की यात्रा पर रहेंगे। वे टोक्यो, नागोया और ओसाका का दौरा करेंगे। उनके साथ भारत का एक बड़ा व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भी जापान जा रहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि ये यात्रा भारत और जापान के विशेष रणनीतिक तथा वैश्विक साझेदारी संबंधों की महत्वाकांक्षाओं को दर्शाता है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि सफाई के काम में मानवीय श्रम को कम करने और मशीनों के अधिक इस्तेमाल की आवश्यकता है। आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि सफाई कर्मियों के लिए सुरक्षा उपाय, सुरक्षा उपकरण और प्रशिक्षण तथा स्वास्थ्य बीमा जरूरी हैं। नौसेना का प्रशिक्षण जहाज सुदर्शनी और पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार जहाज पर सवार चालक दल के सदस्य और प्रशिक्षु पुर्तगाल की नौसेना और भारतीय समुदाय के साथ पेशेवर और सांस्कृतिक आदान प्रदान करेंगे। ये आईएनएस सुदर्शनी का 15वां पुर्तगाल दौरा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ और तटीय आंध्र प्रदेश में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय कर्नाटक, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल के गांगेय क्षेत्र और झारखंड में कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान है। केरलम, माहे, मध्य प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना, उत्तराखंड और विदर्भ में भी दिन में ऐसे ही मौसम की संभावना है। ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में लगातार बारिश से प्रमुख नदियां उफान पर हैं।
3: उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के नये क्षेत्र के कारण उड़ीसा के कई हिस्सों में फिर से भारी बारिश हो रही है। आईएमडी ने आज केंदुझर, मयूरभंज, रायगढ़, कोरापुट और कलाहंडी में बारिश से बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया है। कलाहंडी के थुआमूल रामपुर में पिछले 24 घंटे में 345 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो राज्य में सबसे ज्यादा है। लगातार बारिश के बीच बंशधारा और सालंदी जैसे नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है, जबकि बाढ़ प्रभावित इलाके अभी भी जोखिम की स्थिति में है। 7 जिलों में हालिया बाढ़ से लगभग 14 लाख लोग प्रभावित हुए हैं और राहत व बहाली का काम जारी है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कुछ हिस्सों में आज सुबह हल्की बारिश हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि युद्धपोत निर्माण, अपतटीय पोत और अन्य रक्षा क्षेत्रों में भारत को आत्मनिर्भर बनने की आवश्यकता है, क्योंकि ये देश की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। श्री राजनाथ सिंह आज कोलकाता में गार्डन री शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड और यंत्र इंडिया लिमिटेड से जुड़े 5 केंद्रों के भूमि पूजन समारोह में शामिल हुए। रक्षा मंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार आंतरिक सुरक्षा के मामले में पूरा सहयोग कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 11,000 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई है। उन्होंने कहा कि GRSE ने हाल के समय में 100 से अधिक पोत उपलब्ध कराए हैं। GRSE की परियोजनाएं शिपयार्ड की विनिर्माण क्षमता और बुनियादी ढांचे को मजबूत करेंगी। इन परियोजनाओं से समुद्री बलों और अन्य रक्षा जरूरतों को पूरा करने में भी मदद मिलेगी। यंत्र इंडिया लिमिटेड के मेटल एंड स्टील फैक्ट्री ईशापुर में 750 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से 2 केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। इनसे स्वदेशी धातुकर्म और रक्षा विनिर्माण को मजबूती मिलेगी। चौथे चरण की औद्योगिक क्रांति और ऊर्जा कुशल तकनीकों से लैस ये दोनों केंद्र उच्च स्तर के विनिर्माण को बढ़ावा देंगे, आयात पर निर्भरता कम होगी और रक्षा, रेलवे तथा रणनीतिक क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा किया जाएगा। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहसेन रेजाई ने पड़ोसी देशों को ईरान के खिलाफ अमरीका के आर्थिक अभियान में शामिल न होने की चेतावनी दी है। उधर अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा होर्मुज जलडमरू मध्य को एक बार फिर अमरीकी इलाका बताए जाने के बाद से दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है। ईरान ने फिर कहा है कि जब तक अमरीका अपना रुख नहीं बदलता, होर्मुज बंद रहेगा। एक रिपोर्ट।
4: ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहसिन रेजाई ने होर्मुज पर अमरीकी दावों को खारिज करते हुए श्री ट्रंप के बयानों की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य और अमरीका के बीच की दूरी 7,000 मील से भी अधिक है और ये बयान ऐसे समय में आया है जब अमरीका ईरान पर और अधिक आर्थिक प्रतिबंध लगाने की तैयारियां कर रहा है। ईरान ने कहा है कि इससे उसकी अर्थव्यवस्था को और अधिक नुकसान होगा और प्रमुख व्यापारिक साझेदारों तथा खासकर चीन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जो ईरान के कच्चे तेल का एक प्रमुख आयातक बना हुआ है। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कनाडा के साथ व्यापार वार्ता को स्थगित किए जाने और कनाडा को अमेरिकी राज्य बनाने की इच्छा एक बार फिर व्यक्त करने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार विवाद और गहरा गया है। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कनाडा पर आरोप लगाया कि वो अमेरिकी किसानों पर काफी अधिक शुल्क लगा रहा है। उधर कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा कि अमेरिका की मांग को अनुचित और व्यापार समझौते की अनदेखी करने वाली है। श्री कार्नी ने कहा कि कनाडा अपने कामगारों, किसानों, परिवारों और कारोबार की रक्षा के लिए अमेरिका जितना ही शुल्क लगाएगा। प्रधानमंत्री कार्नी ने स्पष्ट किया कि कनाडा स्वतंत्र रूप से व्यापार समझौता वार्ता करेगा और इस पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध स्वीकार नहीं किया जाएगा। जापान में राजधानी टोक्यो के उत्तर पूर्वी प्रांत इबाराकी में आज तड़के 5.9 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप से पानी की पाइप फट गई और कुछ इलाकों में यातायात सेवा पर भी असर पड़ा। भूकंप का केंद्र 70 किलोमीटर की गहराई में था। और अब कुछ खेल खबरें। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 2 विकेट पर 184 रन बना लिए हैं। इस मुकाबले में सारांश जैन भारत के लिए डेब्यू कर रहे हैं। भारत ने पहला मुकाबला 165 रन से जीता था। श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। और अन्य खेल खबरों के साथ हैं अर्जुन।
5: ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में एक पारी और 51 रन से हरा दिया है। दोनों टीम श्रृंखला में 1-1 की बराबरी पर रही। टेस्ट रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया शीर्ष पर और भारत चौथे स्थान पर है। उधर महिला हॉकी विश्व कप में आज भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए भारत को ये मैच जीतना होगा। पूल ई का ये मैच रात 10:30 शुरू होगा। नीदरलैंड्स 6 अंकों के साथ पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। चीन के 2 अंक हैं, जबकि भारत और ऑस्ट्रेलिया के 1-1 अंक हैं।
0: और अब बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष स्टार्टअप से मजबूत इकोसिस्टम बनाने की अपील की ताकि वे वैश्विक प्रतिभाओं को आकर्षित कर सकें। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की शुभकामनाएं दी। ब्रिक्स देशों के खेल मंत्रियों की बैठक आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में जारी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज 2 दिवसीय रूस दौरे पर रवाना होंगे। छत्तीसगढ़, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट। ईरान ने पड़ोसी देशों को आगाह किया कि वे अमरीकी आर्थिक प्रतिबंध अभियान में शामिल न हों। भारत और श्रीलंका के बीच क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा और अंतिम टेस्ट मैच कोलंबो में जारी। और हॉकी विश्व कप में आज भारतीय महिला टीम का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से। सेमीफाइनल की दौड़ में बने रहने के लिए भारत के लिए मैच जीतना जरूरी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं एफएम बालतलिक 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। न्यूज ऑन ईयर की आराधना चैनल डीटीएच और ओटीटी प्लेटफॉर्म वेज पर भी हम उपलब्ध है। श्रोताओं, एक अच्छी यात्रा वही है जो सिर्फ सुहानी ही नहीं बल्कि सुरक्षित और व्यवस्थित भी हो। अक्सर हम जल्दबाजी में कुछ बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं जो बाद में परेशानी का कारण बनती है। चाहे आप छड़ी यात्रा कर रहे हो या किसी नए रास्ते पर जा रहे हो, कुछ बातों का नियमित रूप से ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जुड़े रहे आप हमारे साथ इस विशेष प्रसारण में।

0: विशेष प्रसारण श्रेया मनाजी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, पल पल के अपडेट्स हम आपके साथ साझा करते हैं। अभी हमारी फ़ोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता एस तारिक साहब अनंतनाग से। जी तारिक साहब।
1: जी बिल्कुल, अभी मैं बता दूं आपको कि 57 दिनों की ये चलने वाली श्री अमरनाथ जी यात्रा के अब महज चंद दिन रह गए हैं, बल्कि अंतिम पड़ाव की तरफ लोग बढ़ रहे हैं। और मौसम के हालात के पेश नजर श्री अमरनाथ जी यात्रा दोनों मार्गों पर 9 अगस्त से आरजी तौर पर मुलतवी है, जबकि छड़ी मुबारक का पवित्र गुफा के और बिलतरतीब सफर जारी है। छड़ी मुबारक की बात चली तो मैं अपने श्रोताओं को छड़ी मुबारक के बारे में विवरण दूं कि छड़ी मुबारक का काफिला जो है इस वक्त पहलगाम में मौजूद है। तो छड़ी मुबारक जब कल पहलगाम पहुंची तो वहां उन्होंने नंदी मर्ग, जिसे नंदमन बेस कैंप भी कहा जाता है, जहां लॉर्ड शिव ने पहले कदम रखा था, वहां भी उन्होंने उसी तरह की जो पूजा या बाकी जो जितने भी धार्मिक महामंत्र है वहां पेश किए। तो उसके बाद फिर आज के दिन भी जो छड़ी मुबारक और उनके साथ जो हमरा इस काफिले में जितने भी साधु संत हैं और दिबंदर गिरी जी जिनकी कयादत में ये सब कुछ हो रहा है, तो वो भी आज पहलगाम में ही है। और आज उन्होंने गौरी शंकर मंदिर में जो बाकी जितने भी पूजा अर्चना होती है वहां की है, और आज की रात भी वो वही अपनी जो रात्रि गुजारेंगे। तो इसके बाद छड़ी मुबारक जो क्या है कि कल 24 अगस्त है तो चंद्रवारी में वो अपनी जो रात्रि गुजारेंगे और वहां भी उसी तरीके से अपनी महामंत्रों का ज्ञान करेंगे जिस तरीके से लॉर्ड शिवा ने जो किया था
0: जी।
1: जो उनके प्राणों से पता चलता है या उनकी जो किताबों में धार्मिक किताबों में है, तो वहां भी एक रात्रि गुजारी जाएगी चंद्रवारी में, जो सिर्फ पहलगाम मेन बाजार से या आप यूं कहिए गौरी शंकर मंदिर से 16 किलोमीटर दूर है, तो वहां तक वो गाड़ियों में जाएंगे कल। उसके बाद बाजार तौर पे चंद्रवारी से पद यात्रा शुरू होती है। तो 24 इस तरीके से 24 को वो वहां आज रात चंद्रवारी में गुजारेंगे। तो जो फिर दूसरी रात्रि होती है वो 25 अगस्त को जो शीशनाग में, जो इस पड़ाव में एक और पड़ाव आता है शीशनाग में भी, ये शीशनाग जब हम बात करेंगे तो इसकी भी एक धार्मिक एक संस्कृति है, एक तारीख है इसके साथ, तो मैं कोशिश करूंगा कि आगे मैं बता दूं। और इसी तरीके से 26 और 27 तारीख को जो अगस्त की तारीख है वो पंचतरणे में रात का पड़ाव करेगी। तो इसी तरीके से फिर सुबह पोफटे वो 28 अगस्त को शरण जो पूर्णिमा के दिन होता है या पावन दिन होता है, उस दिन वो छड़ी मुबारक के जो जितने भी लोग उनके साथ होते हैं, तो ये भी मैं बताता चलूं कि के साथ बाजब

0: तौर पे, सरकारी तौर पे डॉक्टर्स होते हैं, पैरामेडिकल स्टाफ होता है, सिक्योरिटी फोर्सेस होते हैं, हर भाग के जो लोग होते हैं
1: जी,
0: एक बड़ा काफिला बन जाता है और साथ ही उनके साथ होती ही है ये संत वगैरह, तो आगे बढ़कर वो वहाँ ज्ञान करेंगे, वहाँ बाजाबता उसी तरीके का जो जो महामंत्र है जिस तरीके से लाल शिवा ने किया है और वही मंत्र वहाँ करेंगे, और इस तरीके से उसी दिन ये जो धार्मिक जो बाकी महामंत्र है उच्चारण करके श्री अमरनाथ जी यात्रा का जो 2026 की जो इस साल की जो यात्रा है वो रिवाजी तौर पर संपन्न होगी। तो छड़ी मुबारक की ये जो पावन जो परंपरा है सिर्फ, मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ, ये सिर्फ यहाँ के पंडित भाइयों के लिए ही नहीं बल्कि कश्मीरी जो मुस्लिम समुदाय के लोग है या सिख है, इन सबों के पास उनके साथ संस्कृति उनके साथ तारीख की अहमियत रखती है। और मैं भी जानता हूँ, मैं अपने बचपन से देख चुका हूँ कि जो मुकामी लोग हैं सदियों से यही कहते आए हैं कि छड़ी मुबारक की रवानगी जो कहते हैं वो सर्द मौसम की आमद होती है और एक अलामत के तौर पे भी देखी जाती है, और मैं भी इसका गवाह खुद भी हूँ कि बिल्कुल जो कहते हैं कश्मीर में इसको छेड़ वर्ष मौसम बदलो तो सर्दी आ गई, यानी कि छड़ी वापस आ गई और सर्दी साथ ले आई। फिर मुबारक को श्री अमरनाथ जी यात्रा का एक और गहरा धार्मिक और तारीखी संबंध होता है, यही वजह है कि श्री अमरनाथ जी यात्रा की जो परंपरा का आगाज तो होता है वो समापन श्री मुबारक के साथ ही होता है, आगाज भी इससे होता है और उसी एक एक बीच में जो रास्ता आता है ये धार्मिक दौर आता है, धार्मिक जो इसका जो सफर होता है वो होता है। परंपरा के मुताबिक साधु ने अपने शिशुओं को और भक्तों को श्री अमरनाथ जी यात्रा की जानब अपने वक्त में कि भगवान शिवा की पवन शिवलिंगों के दर्शन करने की हिदायत दी थी, जबकि उन उसके शिष्य जो यात्रा पर रवाना हुए तो मार्ग में राक्षसों ने उन्हें परेशान किया और आगे बढ़ने से रोक दिया। ये शिष्य वापस भृंगी शाह के पास पहुंचे और अपनी परेशानी बयान की तो भृंगी शाह ने भगवान शिव की जो प्रार्थना की है तो माना जाता है जो उनकी किताबों में गया है कि भगवान शिव ने उन्हें एक पवन तुम्र अदा किया जिसे बाद में शिव शक्ति की प्रतीक श्री मुबारक का नाम दिया गया है।
1: जी।
0: अब से मुबारक का जो सफर है छड़ी जो ये काफिला आता है तब से ही छड़ी मुबारक को भगवान शिव शक्ति की पवन निशानी माना जाता है, तब से ही भक्तों का एक बड़ा जत्था इसी पवन छड़ी के साथ श्री अमरनाथ जी गुफा की जानिब यात्रा करता रहा है। जिस तरीके से मैंने बताया था किन किन जगहों पे रुकते हैं तो वहाँ बाजबता एक तवारीख है उनकी, तो मजहबी जो उनकी किताबें हैं उनके मुताबिक भगवान शिव ने माता पार्वती को अमृत का रहस्य बताने के लिए इन्हें अमृत यानी चंदानी का जो राज बताना था, तो पहलगाम के इन्हीं ऊंची पर्वत और ग्लेशियरों के दरमियान जो वाक्य है पवन गुफा का इंतखाब किया था। माना जाता है कि गुफा के जानेब जाते हुए भगवान शिव ने अपनी मुख्तलिफ चीजें अलग अलग मुकाम पर छोड़ दिए, इस तरीके से इस वक्त छड़ी मुबारक वहां रुकती है। कहा जाता है कि नंदी जो मैंने पहले भी बताया था कि नंदी से उनका वहां पवन बेल जो साथ होता था उन्हें भी छोड़ दिया है। इस तरीके से चंद्रवारी में उन्होंने अपने जटाओं से चंद्रमा को अलग किया, शेषनाग में अपने गले ने जो धारण किए हुए नाग को वो भी वही छोड़ दिया, जबकि पंचतरणी में जिंदगी के पांच तत्व पृथ्वी जल अग्नि और आकाश का त्याग किया। और ये भी माना जाता है कि भगवान शिव ने महागुना जो महागुना टाप स्वर्ग कहते हैं जहां से उनका गुजर होता है वहां पे उस चोटी पे उन्होंने अपने पुत्र गणेश को भी पीछे छोड़ दिया, ताकि ये जो उनके साथ माता पार्वती को जो बात बतानी थी उसमें ये कोशिश रहती थी कि किसी को ये बात ना पता चले जानदारी की बात क्या है। श्री अमरनाथ गुफा की यात्रा करने वाले श्रद्धालु पवन स्थानों से होते हुए गुफा तक पहुंचते और इस पर यात्रा का जो अंतिम पड़ाव है छड़ी मुबारक के साथ ही मुकम्मल होता है। ये बाजाबता तौर पर उसी दौर की याद दिलाती जो लॉर्ड शिवा का दौर था, उसका एक सिंबॉलिक ये छड़ी मुबारक पेश करता है, तो वही छड़ी मुबारक आज पहलगाम में है। हालांकि अभी यात्रा बिल्कुल निलंबित है लेकिन ये आखिरी चंद दिनों की जो बात है ये छड़ी मुबारक के साथ ही शांति से और दुआओं और बड़े अमन के साथ ये अभी 28 तारीख को अंत हो सकता
1: है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। श्रोताओं, ये थे हमारे संवाददाता इस तारिक साहब अनंतनाग से।

विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 आप समाचार FM बालतल 103.7 MHz पर, FM पहलगाम 100.1 MHz पर। श्रोताओं, अमरनाथ यात्रा सिर्फ एक तीर्थ यात्रा नहीं बल्कि कश्मीर के लोगों के दिल का सफ़र है। ये वो किस्सा है जो सदियों से चला आ रहा है, जिसमें कश्मीरी लोग अपनी मेज़बानी, समर्पण और प्यार से यात्रियों का स्वागत करते हैं। ये यात्रा बताती है कि धर्म और इंसानियत के बीच में कोई दीवार नहीं। तो जब भी आप अमरनाथ यात्रा के बारे में सोचें, याद रखें, ये यात्रा सिर्फ बाबा बर्फानी के दर्शन का मौका नहीं बल्कि कश्मीर के लोगों के भाईचारे और अपनापन की कहानी भी है। जुड़े रहे आप हमारे साथ इस विशेष प्रसारण में।

विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आपके साथ छड़ी मुबारक का कार्यक्रम साझा करना चाहेंगे। जैसा कि 12 अगस्त छड़ी मुबारक को दाशनामी अखाड़ा श्रीनगर से पुराने और प्रसिद्ध शंकराचार्य मंदिर ले जाया गया, जहाँ दर्शन हुए। 13 अगस्त छोड़ी मुबारक को शारिका भवानी मंदिर ले जाया गया, जहां विशेष पूजा हुई। 15 अगस्त दाशनामी अखाड़ा श्रीनगर के अंदर स्थित श्री अमरेश्वर मंदिर में छड़ी स्थापना की धार्मिक रस्में की गई। 17 अगस्त नाग पंचमी के शुभ मौके पर दाशनामी अखाड़ा में पारंपरिक छड़ी पूजन हुई। पूजन के बाद छड़ी मुबारक भक्तों के दर्शन के लिए उपलब्ध रही। 12 अगस्त यानी कल छड़ी मुबारक की मुख्य यात्रा शुरू हुई। 22 अगस्त यानी कल छड़ी मुबारक की मुख्य यात्रा शुरू हुई। 23 अगस्त यानी आज पहलगाम में ही रात का विश्राम होगा। 24 अगस्त रात का विश्राम चंद्रवाड़ी में होगा। 25 अगस्त रात का विश्राम शेषनाग में होगा। 26 और 27 अगस्त रात का विश्राम पंचतरणी में होगा। 28 अगस्त श्रवण पूर्णिमा रक्षण बंधन के दिन छड़ी मुबारक अमरनाथ की पवित्र गुफा पहुंचेगी। यहां अंतिम पूजन और दर्शन होंगे, जो 2026 की अमरनाथ यात्रा के औपचारिक समापन को दर्शाते हैं। जुड़े रहे आप हमारे साथ इस विशेष प्रसारण में।

विशेष प्रसारण श्रीयमाना जी आदरा 2026 आप समाप्त करें एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज पर, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोतो, अमरनाथ यात्रा का रूहानी महत्व अपार है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ बाबा बर्फानी के रूप में स्वयंभु आय शिवलिंगम के दर्शन से मोक्ष की प्राप्ति होती है। हिंदू मैथोलॉजी के अनुसार ये वो स्थल है जहाँ भगवान शिव ने माता पार्वती को अमर कथा सुनाई थी। यात्री जब यहाँ आते हैं न वो सिर्फ अपने पाप धोते हैं बल्कि हिमालय की पर्वत और सुंदर वादियों में अपने आप को प्राकृति के करीब भी पाते हैं। ये यात्रा श्रद्धा, साहस और समर्पण का प्रतीक है।

विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 आप समाप्त करें एफ एम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज पर, एफ एम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, एक बार फिर आपके साथ छड़ी मुबारक का कार्यक्रम साझा करना चाहेंगे। 22 अगस्त यानी कल छड़ी मुबारक की मुख्य यात्रा शुरू हो गई है। 22 और 23 यानी 23 अगस्त को पहलगाम में ही रात का विश्राम होगा। 24 अगस्त रात का विश्राम चंदनवाड़ी में होगा। 25 अगस्त रात का विश्राम शेषनाग में होगा। 26 और 27 अगस्त रात का विश्राम पंचतरणी में होगा। 28 अगस्त श्रावण पूर्णिमा रक्षाबंधन के दिन छड़ी मुबारक अमरनाथ की पवित्र गुफा पहुंचेगी। यहां अंतिम पूजन और दर्शन होंगे, जो 2026 की अमरनाथ यात्रा के औपचारिक समापन को दर्शाता है।

विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 आप समाप्त कर एफ एम बालतल 103.7 MHz पर, एफ एम पहलगाम 100.1 MHz पर। श्रोताओं आए सुनते हैं बालतल बेस कैंप में रिकॉर्ड की गई आरती।

सभी भक्तजन भोले बाबा के चरणों में बैठकर भोले बाबा की पवित्र आरती का दर्शन कर रहे हैं, आरती श्रवण कर रहे हैं। आप सभी भक्तजन बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ, प्रीति के साथ, आनंद मन से भोले बाबा के भजन का ध्यान करेंगे।

0: बोलिए शंकर भगवान के
1: जय,
0: धर्म के
1: जय,
0: अधर्म का
1: नाश हो,
0: प्राणियों में
1: सद्भाव हो,
0: विश्व का
1: कल्याण हो,
0: गौ माता की
1: जय,
0: मात पिता की
1: जय,
0: गुरु जनों की
1: जय,
0: सभी संतों की
1: जय,
0: सभी भक्तों की
1: जय,
0: सत्य सनातन धर्म की
1: जय,
0: आज के आनंद की
1: जय,
0: भारत माता की
1: जय,
0: शंकर भगवान की
1: जय,
0: शंकर भगवान के परिवार की
1: जय,
0: शंकर भगवान के गणों की
1: जय,
0: शंकर भगवान के भक्तों की
1: जय,
0: अमरनाथ स्वामी की
1: जय,
0: बाबा बर्फानी की
1: जय,
0: नमः पार्वती।

0: you.
1: श्रोताओं, आप बाल दल में रिकॉर्ड की गई आरती समाप्त कर रहे थे। इसी के साथ हमारी आज की सभा समाप्त होती है। आपको बता दें कि श्री अमरनाथ जी के इस विशेष प्रसारण में हमारे साथ बाल दल में हमारे साथी इंजीनियर्स थे इरशाद अहमद नायकू, फारूक अहमद डार और मोहम्मद सलीम। मैं आपकी साथी उद्घोषिका वजमान फेरोज और इस विशेष प्रसारण के प्रस्तुतकर्ता श्री वसीम फारूक वानी और श्री गुलाम रसूल आखून। यात्रा का विशेष प्रसारण लिए हम आपकी सेवा में कल सुबह 6:53 फिर उपस्थित होंगे। जब तक के लिए शुभ यात्रा, शुभ रात्रि, जय हिंद।

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना।

उधर प्रजा में भयंकर प्रतिक्रिया होती है। लोग आपस में कानापूसी करने लगते हैं। कुछ स्त्रियां अपनी बात साधारण जन के बीच रखती हैं।

प्रभु राम, सीता, लक्ष्मण गंगा पार केवट को उतराई देना चाहते हैं, परंतु केवट अपने प्रभु से सहज भाव से उतराई न लेने की भावना प्रकट करते हैं।

गंगा पार होने के पश्चात भगवान प्रसन्न भाव से केवट को विदा कर भारद्वाज आश्रम संगम नगरी पहुंचते हैं, जहां राम सीता लक्ष्मण व भक्तगण स्नान ध्यान पूजन भजन और कीर्तन कर रहे हैं।

भरद्वाज आश्रम से भगवान चित्रकूट पहुंचते हैं, जहां कुछ आदिवासी स्त्रियां मिलती हैं और सीता से प्रश्न करती हैं। सीता जी लजा कर कुछ इस तरह कह उठती हैं।

श्वेत वृषभ पर विराजेला, श्वेत वस्त्रों ने धारण करणारा, महादेव जी ने आनंद अपनारा, हे तेजस्विनी महागौरी देवी, हमने शुभ पदार्थो आप। महागौरी ये पार्वती देवी ज एम कहवाई छे के एक समय महादेव जी पोताना आ अर्धांगना शक्ति नो परिहास विनोद मा करता काली श्यामा एम कहूं। एथी आ देवीए उग्र तपश्चर्या दिव्य आराधना करीने अति गौर श्वेत वर्ण प्राप्त कर, एथी आ महागौरी कहवाया। महागौरी पार्वती जी तथा महादेव परमेश्वर के ये वाणी अने अर्थनी माफक संयोजित छे। इमने वाणी तथा अर्थनी प्राप्ति माटे महाकवि कालिदासे

हे भवानी गौरी, स्मशाननी चितानी भस्मनु आलेपन करनार महादेव, जेरनु विष्णु भोजन करनार दिगंबर, जटाधारी कंठे नागराज वासुकी ने हारना रूप में दान करनार, हाथमा कपाल भिक्षा पात्र धारनार भगवान पशुपति महादेव जगदीश नी पदवी पाम्या। हा हा हा, खरेखर ये तो हे परमेश्वरी तमारा पाणी ग्रहण नी परिपाटी योजनानु फल। हे महादेवी, आप अमारा ऊपर प्रसन्न था।

हे गौरी, ज्यांना मस्तके चंद्र शोभिले होशे ते महादेवजीची सम्मानित थयला, हे गौरी देवी अपने में प्रणाम कर गीश। दुसाथीश ये गौरी नु भवानी तरीके शंकराचार्य जी देवी अपराध क्षमापन मा स्तोत्र मा सुंदर स्तवन करूश। भवानी किता भस्मा लेपो गरल मशानम।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

ಬರುವಾಯ ಅಂತರ ಕೀರು ಕಗನ ಬರುವಾಯ ಅಪನೀ

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति। अयोध्या से राम लला।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।